की जय आसु। रमैया गुण गाइए जा ते पाइए परम निधान रहाउ। क्या जप क्या तप संजम क्या वरत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानी आए पाहु भगत भगवान। संपै देख न हरखी है विपत देख न रोए, ज्यों संपै त्यों विपत है बिद ने रचिया सोए। कह कबीर अब जानिया संत नद मजारू, सेवक सो सेवा पले जे कट बस मुरारू। गौड़ी रे मान तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और रहाउ, और मुए क्या रोहिया जो आपा थिर न रहाए। जो उपजै सो बिन सहाय दुख कर रोवै बलाई। जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चित आओ राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहार कामनी, लोचन भरी ले सासा, और ना पीजै पगना खिसै हर दर्शन की आसा। उडहो न कागा कारी बेग मिली जय अपने राम प्यारी रहाउ। कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय, एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारह आसा आस पास कान तुरसी का बिरवा, माज बना रस गाऊ रे आकाश रूप देख मोही ग्वारन, मोका छोड़ न आऊ न जाहू रे। तो हे चरण मन लागो सारिंग धार, सो मिलै जो बड़ भागो राउ। बिंद्रा बन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे। जाका ठाकुर तही सारिंग धार, मोहे कबीरा नाऊ रे। गौड़ी पूर्वी बारा बिपल वस्त्र के ते है पहरे, क्या बन मधे बासा कहाँ पया नर देवा धोखे, क्या जल पयो बिग्याता। जी अरे जाहेंगा मैं जाना अवगत समझ आना, जात कत देखो बहुर ना पेखो संग माया लपटाना रहाउ। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी यह जग सगलो तंदा, कह कबीर एक राम नाम बिन या जग माया अंधा। गौड़ी बारा मान रे छाडो भरम प्रगट होए नाच, या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डर पै सती के सांचे पांडे। डगमग छाड रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सद पाई है लीनो हाथ संधौरा रहाउ। काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगुता, कह कबीर राजा राम।

करिया तुझे तेन सुधार। बंदे बंदगी एक त्यार साहेब रोस धरम के प्यार रहो। नाम तेरा आधार मेरा जो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जो जी जोन मैं प्रमत नंद बोथ कोरे। भगत हे ते अवतार लियो है पाग बड्डो बबरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे। तरण आकाश दसो दिस नाही ताब एही नंद कहां थोरे। रहाओ संकट नहीं पर जोन नहीं आवै। नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी सो ठाकुर जा कह माई न बापोरे। गौड़ी

राजा राम तू ऐसा निर्भव तरण तारण राम राया रहो। जब हम होते तब तू नाही तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भय है एक देखत मन पतियाही। जब बुद्ध बल होती तब बल कैसा जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हिर हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी कोठड़ी बांधी बस्तनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई राओ पंच पहरुआ धर्म रहते तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चेत होए रहो तौ लै प्रगास उजारा। नाव कर देख जो काम न भूली बस अनूप न पाई। कहत कबीर नवै कर मूसै दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अबर ना जान्यो आनन शिवसन काद जास गुन गावें तास बसें मोरे प्राणान राऊ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गमत गगन मंडल मह ध्यानान। बिखै रोग मै बंधन भागी जे मान निज घर सुख जानान। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मन है न आना न। चंदन बास भई मन बासन त्याग घट्यो अभिमाना न। जो जन गाए त्याय जस ठाकुर तास प्रभु है थाना न। ते बड भाग बस्यो मन जा कै कर्म प्रधान मथाना न। काट सकत सब सहज प्रगासियो एक एक समाना न। कह कबीर गुर भेट महासुख प्रमत रहे मन माना न। राग गौड़ी गवा पूर्वी बावन अखरी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। बावन अक्षर लोक त्रय सब काशे नहीं माहे ए अखर खिर जाहेंगे ओए अखर इन मह नाहे। जहां बोलत है अक्षर आवां जहां अबोल तह मन ना रहावां। बोल बोल मद है सोई जास ओह है तस लख न कोई। अल्लाह लह तो क्या कहो कहो न को कहो ताको उपकार। बटक बीज मेहरब रहे हो जा को तीन लोक विस्तार।

तुर कतरीकत जानी है हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कशुअक पढ़िया ज्ञान ओंकार याद मैं जाना लिख अर मेटै ताहे न माना ओंकार लखै ज कोई सोई लख मेटना न होई कक्का किरण कमल मैं पावा सास विगास संपट नहीं आवा आर जी तहां कुसम रस पावा अको कहां कह का समझावा खखा यह खूड़ मन आवा खूड़े शाड़ न दे दिसतावा खसमै जान के मां कर रहे तो होई नेख आओ अखै बदले गग्गा गुर के बचन पछाना दूजी बात न धरी काना रहे बिहंगम कत न जाई अगा गहे गहे गगन रहाई कग्गा घट घट निमस सोई घट फूट घट कब न होई तां घट माही घाट ज्यों पावा सो घट छाड़ अब घट कत तावा नंगा निग्रह सुनेह कारू निर्वारु संदेह नाही देख न पाजी है परम सयान पेहे चचा राचित चित्र है भारी तज चित्र चेतो चितकारी चित्र बचित्र है अवचेरा तज चित्र चित्राख चतेरा छछा इह शत्रपत पासा शक के ना रहो छाड़ के ना आसा रे मान मैं तो छिन छिन समझावा ताही छाड़ कत आप बंधावा जजा जाओ तन जीवत जरा वै जो बन जार जुगत सो पावै आस जार पर जार जार जब रहे तब जाय जोत उजारों लहे चजा उर्ज सुरज नहीं जाना रहो चज कौ नाही परवाना कत चक चक और न समझावा जगर किए जगर ही पावा निन्या निकट जो कट रहो दूर कहाँ कत जाई जां कारण जग ढूंढयो नेरों पायो ताहे टटा बिकट घाट कट माही खोल कपाट महल के ना जाही देख टल टल कतह ना जावा रहे अला अला पट कट पर चों पावा ठठा यह दूर दग ठग नीरा नीठ नीठ तन किया तीरा जिन जा ठग ठगया सगल जग खपा खावा सो ठग ठगया ठाउर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मह डर रहे समाई ज्यों डर डरे ता फिर डर लग गए न डर हुआ डर उर होए पा गए टड्डा ठेग ढूंढ कत आना ढूंढत ही टह गए पुराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जेहे गाड़ च गड़यो सो गढ़ मह पावा नाणा राण रूतो नर नेही करै ना सिव ना निवै ना फुन संच रै तन जन्म ताही कौ गणै मारै एक ताज जाय कणै तत्ता अतार तरयो न जाई तान त्रिपवन मै रहौ समाई जौ त्रिपवन तान माही समावा जौ तत्तै तत् मिलया सुख पा सच पावा तथा था था नहीं पावा ओह अथाह ही थिर न रहावा थोड़ा थाल थान के आरंभ बिन नहीं थाम्ब मंदर थम्बै ददा देख जो बिन सुनहारा जास देख तास राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजै तौ दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दय उर्द नबेरा अर्दय उर्दय मंज बसेरा अर्ध शाड़ अर्ध जऊ आवा तौ अर्ध है उर्द मिलया सुख पावा नन्ना निसदिन निरखत जाही निरखत नैन रहिल रतवाई निरखत निरखत जब जाई पावा तब ले निरख है निरख मिलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यों पर च्यों पुलावा पांचो इंद्री निग्रह करही पाप पुन दो निर्भरही पाप पुन दो निर्भरही फप्पा बिन फूलै फल होई ता फल फंक लखै ज्यों कोई दून ना परी फंक विचारै ता फल फंक सबै तन फारै

बांध शोध लहै पब्बा पेद पेद मिलावा ता अब पाओ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जाने आ पया पेद भूपत पहचाने आ।

इस उमर को मन को जाने मत कोई मन मिलता बिल लावे मगन भया ते सो सच पावे मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सदोए मन ही मन स्यों रहे कबीरा मन सा मिलया ना कोई ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕਉ

रण रूतो भज नहीं सूरो थारो नाऊ रारा रास निरस कर जाने आ हुए नरास सो रस पह जाने आ।

सोग मिटे तब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रहे, जह का बिछरा तह थिर लहे। बाब ने अखर जोरे आन, सक्या ना खरे क पछान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अन पै रहे।

ना माल ना शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस धावै तौ जोनी संकट सबौर न आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनस बाजै अनहद तूर देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो तेर सतेरह अगम बखाण अर्ध उर्द बेच सम पहचान नीच ऊच नहीं आमान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम महे बस मुरार सत संतोख का धरो ध्यान कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान पुण्यो पूरा चंद आकाश पसर कला सहज प्रगास आद अंत मद होए रहे आती थीर आद अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर महरम कबीर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पवित्र उपदेश दे विच सोझी दे रहे। कहिंदे अजीब इस दुनिया दे उपर तू सदा चिर नहीं बैठे रहना, एक ना एक दिन काल रूपी बिल्ला चबट मार देवेगा ते तू इस दुनिया विचों उठ जाना है ते जिस मालक दी दरगाह विच अगे जाना है उथे तेरे कोलों कड़ी कड़ी दा लेखा पुछया जाना है ते फिर उथे तू की हिसाब देवेगा। हुण तू जप जप के स्वास सफले नहीं करदा, सेवा सिमरन विच नहीं जुड़दा, संगत विच नहीं बैठदा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। उस प्रभु दी दरगाह दे विच केड़ा मुख लेके जावेगा। कि माया दे मोह विच फसिया होया इंसान कई बार ये आख देंदा है भी ये झूठ ही गल है, अगे कोई लेखा जोखा नहीं, सब कुछ इथे ही निबड़ जांदा है। पर गुरु प्यारियो देखो सतगुरु पातशाह पवित्र उपदेश विच आख रहे ने, परमेश्वर के द्वारे जो होए बुतीते सो नानक आख सुनावे। ये सच्ची गल है भी उथे हिसाब किताब होना है। पातशाह कहिंदे झूठ नहीं, ये गुरु नानक दी बाणी ओही गल आख रही है जो मालक दी दरगाह विच होनी है। हर के दर बरतिया सो नानक आख सुनाया। गुरु नानक दी बाणी ओही सुना रही है जो उस मालक दे दर ते होना है। ते बाणी गुरु नानक दी की कह रही है, कहिंदे उथे तेरे कोलों लेखा पुछया जाना है। दस किन्ने सवास तू प्रभु दी जाद विच गुजारे ने, किन्ने वेकार विच खोए ने। उथे कोई हिसाब सालां दे हिसाब नाल नहीं लिया जाना, महीनियां दे हिसाब नाल नहीं, दिनां दे हिसाब नाल नहीं, उथे ते कड़ी कड़ी का लेखा मांगे। एक एक सवास दा एक एक साह दा लेखा तेरे कोलों लिया जाना है। बे दस इस सवास दे विच किन्ना मंदा कीता है ते किन्ना चंगा कीता है, ते फिर क्या मुख लेके जाएगा। दस केड़ा मुख लेके जाएगा।

इस जीव ने सारी जिंदगी पाप कीता है। जमगण आए हथा नु हथ कड़िया ती पैरा नु बेड़िया लाइया ने खिच के लै चले ने केंदे क्या ते खटिया कहां गवाया चलो सिताप दीवान बुलाया चल तेनू मालिक दी दरगाह विच बुलाया है तेरे कोलो पुछना है क्या ते खटिया कहां गवाया। किन्ने सवास तू प्रभु दी जाद विच गुजारे ने ते किन्ने बेकार विच खोए ने।

पादरी जी महाराज पवित्र उपदेश देव सोझी दे रहे ने ऐ जीव काहे रे बन खोजन दाई ऐ जीव ओ मालक जंगलां विच नहीं वसदा ओ मालक किधरे बार नहीं वसदा उसनू किधरे भी टोलन ना जाई तेरे हित दे घर विच बैठा है तेरे नाल है बस लोड है तेरे अंदर प्यार बन जावे तेरी देखण वाली अख बन जावे ना कछ आएगो ना कछ जाएगो राम की दुहाई।

जे बड़े आप ते बड़ तेरी दात जैन जैन करके कीती रात खसम बिसार हैं ते कम जात नानक नावे बाज सुनात राग गूजरी महला चौथा हर के जान सत

प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ हर जन केवड़ भाग बडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मैल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर मैं जन तो पाए ता कर रिज का गह कर तरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाऊ जनन पिता लोक सुत बनेता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिज कसंबाही ठाकुर काहे मन पौ करिया उडे उड़ा वैसै कोसा तिस पाछ बचरे चरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न पारा वरिया राग आस्था महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा

हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक को पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक दिन कुरबाणा हर त्याव है तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भय जन हर त्याया जी तन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करहें हर पूजा जी तप तप हैं जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहुत समृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव हैं मेरे हर भगवंता तू आदि पुरुष अपरंपर करता जी तुद जीवड़ अवर ना

0: को जाके ऐसी मौत मारूंगा। तेरे नाल भी मैं खट नहीं गुजारूंगा, ये तेरे खुजा के ऐसी मौत मारूंगा।
1: माफी मांग मांग के दोहाइयां पावेगा, माफी मांग मांग के दोहाइयां पावेगा। याद रखी देवी चंदा पछतावेगा, याद रखी देवी चंदा।

0: बस दम गाके भी गड़ी सवार ले रहिंदा है वक्त अजे भी विचार ले बस दम गाके भी गड़ी सवार ले
1: हो रहिंदे रोज सुख।

0: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISD 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call
3: 250-392-3874.

कोई हंसते ही नहीं है कि हंसता थोड़ी है कि मैं रोकना रोना रोको हंसता हंसता रो गया दुख बड़े गहरे हैं दुख से पोते हैं उतर उतर मुख्तसर में अर्ज करा संसार दो रंगी प्रभु ने बनाया समा दो रंगी मनुष्य ने बनाया जो मिलता है बिछड़ है समय जो मिलता है समा बिछोड़ के रहता है समय जो उपलब्ध होता है हथों खो रहे हैं मिलना बिछड़ना सुख दुख जन्म मरण हासा रोना ये दोवें इकट्ठे दोवें इकट्ठे मनुख की मुसीबत भी है एक कबूल है एक नहीं जन्म के कबूल है मरण नहीं मरते दम तक लोग जन्म दिन मना ले बच्चा जन्मदिन मनावे चलो माप की बात आ सकते अब जो बेचारा नहीं मनाता वे मां बाप ही मना एक जवान जन्मदिन मनावे महामूर्ख होवे और एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे सिवाय फिटकार के लानता तो उस दिन होगी पाई तुम भी जन्मदिन जमया से 80 साल हो गए मरण दिन के बिल्कुल नेड़े 100 दिन आया नेड़े धर्म की यात्रा जन्मदिन को याद करने नाल नहीं आती बल्कि किस तरह आती है पहला मरण तो जीवन क्यों छड़ा और इस दबन के रहने तो आओ हमारे मौत में कबूल ना पर मनुख न जन्म कबूल है मरण नहीं सुख कबूल नहीं दुख नहीं खुशी कबूल है गम नहीं नफा कबूल है नुकसान नहीं जवानी कबूल है बुढ़ेपा नहीं भारत के त्योहारियों को पता चल गया मेरे नाल के सारे साथी भी इंडिया चल रहे इस वर्ष में मेरे नाम लैंड भी कोई संकोच नहीं 22 साल भाई कल्याण सिंह मेरे नाल 35 साल तो चल रहे बड़े प्रसिद्ध कीर्तनी है पड़ताल भी गाने दे रहे हैं और आज भी कंठ जवाना हो रहा है प्रभु की बख्श इंडिया के रेलवे के सीटा बुक करानिया वरना तो अपनी उम्र भी लिखनी चाहिए शायद आपको पता हो जरूर बुक कराई होनी गड्डिया सीटा बुक करानिया वन अपनी उम्र भी लिखानी है लिखनी चाहिए अमृतसर तो बॉम्बे जाना सी कि गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस सीटा बुक करानिया सन दो तीन फार्म की 40 बंदे ने कठे जाना इस तो बाद उम्र रेखा ने 22 साल ने 60 साल लिख लिया मैं कह भाई कल्याण सिंह जी कि मैं बोलता नहीं कम से कम 15-16 साल तो मैं थानू देख रहा उम्र 60 साल ही लिख रही अगे पिछले साल भी मैं देखे उन्होंने नहीं पता कि मैं इसके ध्यान रखे कुदरती ध्यान पै गया मैं तो पिछले साल भी सठ और सौ पिछले साल मैं तो सठ से ही रुक गए और गल भी कहता सठ से ही चंगे नहीं कि तुम बुढ़ा हो अरे सठ होके भी बुढ़े ने और 15-20 साल तो सठ लिखी जा रहे फिर मैं एक नुकता मिले हर मनुख अपनी उम्र घटा के दसता है मैनू नुकता मिले जे 80 दा जे 70 दसदा जे 70 दा जे 60 दसदा जे 60 दा 50 दसदा जे 50 दा 40 दसदा जे 40 दा 30 दसदा बीबियां 30 तो अगे जांदियां ही जवानी कबूल है बुढ़ेपा नहीं जन्म कबूल है मरण में सुख कबूल है दुख में हंसे कबूल ने रोने ने महाराज कहने चख मार चख मार नाम है तो बोलना चखना

दे दर्शना दी अभलाखा हुंदी है। जदों मन केवल दर्शना ते ही आधारित हुंदे, जद मन विच बेबलता हो उठदी है, जदों मन दर्शना तो बिना रह नहीं सकदा, तदों ही सतगुरु दा मेल हुंदे ते वाहिगुरु नाम जपिया जांदे। जदों वाहिगुरु जी दा नाम अठो पहर नाम दी धुन विच लीन हुंदा, तदों सतगुरु जी सिख ते प्रसन्नता करदे ने ते सिख नूं वाहिगुरु जी दा दर्शन हुंदे ते अंतोगतवा सिख सतगुरु दी कृपा नाल वाहिगुरु तत विच विलीन हो जांदा है। ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट के गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। सफल दर्शन पे सत पुनीत, परसत चरण गट निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवै, पार ब्रह्म की दर गए गवै, सुनकर बचन कर

ओ अखर इन में नाही। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिया, वाहिगुरु बोलदिया बोलदिया मधमा जाप विच जदों मन दा उच्चारण नहीं हुंदा, जदों मन केवल कन्ना राही वाहिगुरु नाम नु सुनदा सुनदा सुनदा सुनदा सुनदा, जदों इही सुरत विच शब्द विच लीन हुंदी है तदों इस दा ध्यान बनदा, जदों ध्यान बन जांदा उदों सुनना बंद हो जांदा, जदों सुनना बंद हो जांदा बोलना बंद हो जांदा उदों मन दा स्वरूप जो विचारां दा ओ गिर जांदा, इउं मन संतोखिया जांदा मन मुक जांदा, जिथे मन मुक जांदा मन सुते ही आत्मा दा स्वरूप है उथे आत्मा प्रगट हो जांदी। सच ता एही है इस देही विच मन नहीं है, मन किसे अज तक वेख्या ही नहीं है, इस देही अंदर सुते ही आत्मा दा स्वरूप है जो परमात्मा दा कण है। इस देही नू वाहिगुरु जी आप ही चला रहे हन, आप ही जीवन दाता हन, आप ही प्राण नू चलाउंदे हन, आप ही मन दी क्रिया नू मन दी सोच नू बनाउंदे हन। सुते ही ए मन आत्मा दा स्वरूप है, नाम दे अभ्यास नाल गुरां दी आग्या विच रह के वाहिगुरु नाम दे स्रोत विच लीन हो के मन गिर जांदा है ते सुते ही आत्म स्वरूप इस विच प्रगट हो जांदा है। इस नू भगत होना आखी दे, संत होना आखी दे, पूर्ण खालसे दा स्वरूप होना भी आखी दा है। पूरा गुर अखियो जा का मंत्र इति पूरे गुरु दी दौलत है, इति पूरे गुरु दी रहमत है, इति पूरे गुरु दा कृष्णा है। जदों पूरा सतगुरु नजर करके प्यार नाल अपने बच्चे वल वेखदा है अपने सिख वल वेखदा है उदों सिख नाम दी दौलत लेके शहनशाह हो जांदा है। सिख वल वेखना तां शहनशाह होना ही है। गुरु दी कृपा नाल गुरदेव ने कौड़े रीखे वल वेखिया ओ मिठा हो गया। गुरु नानक ने नजर करके सज्जन ठग वल वेखिया ओ सज्जन हो गया ठगी मुक गई। गुरु नानक दी अख ने तत्ते तेल दे कड़ाहे वल वेखिया तत्ता तेल ठंडा ठार हो गया। कौडे राक्ष वल वेखिया कौडे राक्ष दी अख नू गुरु नानक दी अख ने वेखिया ते कौडा राक्ष जो दैंत सी ओ देवता बन गया, गुरु नानक दे चरणा विच डिग पिया, गुरु नानक दा सिख होके निबड़िया। पूरा गुर अखियो जा का मंत्र इत गुरु दी दौलत है, इत गुरु दी मेर है, इत गुरु दी शहनशाहित है, इत गुरु दा कृष्णा है। जो सिख ते सदा ही गुरदेव अपनी दया मेर नाल वरसाउंदे रहंदे हन। अमृत दृष्ट पेखे होए संत सतगुरु दी दृष्टि विच अमृत वसदा है ते उस अमृत नूं पान करके सिख जड़ा है ओ संत हो जांदा है। संत जो हर वेले वाहिगुरु जी दा नाम जपदा है जिना सास ग्रास ना विसरे हर नामा मन मंत तन से तेरी नानका पूर्ण से संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए सतगुरां विच गुण ते अनंत ने, सिख उसकी कीमत नहीं पा सकदा मुल नहीं दे सकदा। नानक जिस भावे तिस लय मलाए सतगुरु जदों मेहरबान हुंदे ने जदों प्रसन्न हुंदे ने जिनू चाहण उनू अपना बना लैण अपने चरणा दे दास बना के अपना चाकर बना के उनू बख्श लैण। जेबा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल ना पहुंचत प्राणी
अगम अगोचर प्राभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंदन लिट कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलहारी

हर रस पावे जन कोई। वाहिगुरु जी दे नाम दा रस किसे विरले नहीं पाया है। तपस्या करनी कठिन है, मन दा योग बनाना भी कठिन है। मन बहुत चंचल है, दसां कुंटां विच फिरदा है, देही दी वरतों करदा है, अपने मन दी मर्जी विच रहिंदा है। मन वस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए, पूर्ण सतगुरु जे मेहर करदन ता मन वस विच आउंदा है, सुर शब्द योग हुंदा है ते सतगुरां दी कृपा नाल हरी दा रस प्राप्त हुंदा है, वाहिगुरु जी दे नाम दा रस प्राप्त हुंदा है। नानक अमृत मने माए हैं, पाईए गुर प्रसाद। गुरदेव फरमाउंदे ने ए वाहिगुरु नाम दा रस ते मन दे विच ही है, सतगुरां दी कृपा लैके ही असीं इस नूं प्राप्त कर सकदे हां। तां कि इह हरी दा रस किसे विरले ही प्यारे मर जीवड़े सिख ने प्राप्त कीता है। अमृत पीवे अमरसो होए, जिस प्राणी ने ए अमृत पी लिया उसका मन रज गया, वो अमृत स्वरूप ही हो गया। उस पुरख का ना ही कदे विनाश, उस मनुख का कदी फिर विनाश नहीं हुंदा, उते सत नाल मिलके सत स्वरूप ही हो गया है। जाके मन प्रगटे गुणतास, जिस सिख दे मन विच गुणी निधान वाहिगुरु जी आप प्रगट हो जान, उस सिख की कदे मृत्यु नहीं हुंदी है, कदे नाश नहीं हुंदा है। आठ पैर हर का नाम ले, अठो पैर जो वाहिगुरु जी का नाम जपदा है। सच उपदेश सेवक को दे, वाहिगुरु का नाम जो जपदा है यही सत का उपदेश और दूजिया प्राणियों नूं देंदा है कि बच्चियो तुसी भी वाहिगुरु जी का नाम जपो। ऐ गुरसिखो प्यारियो, वाहिगुरु नाम ही सत है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपिया करो। ए मनुख जीवन अमृत वेला है, ए वाहिगुरु नाम जपण दा वेला है। तां ते वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जरूर जपियो। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। मोह माया के संग न लेप, माया तो व्रत होके रहो। माया का लोभ ना करो, माया लई अपने मन विच मोह भी ना रखो। मन में राखे हर हर एक, अपने मन विच केवल वाहिगुरु दे नाम नू ही टिकाओ। अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख पहते नासे। जिवे अंधेरे विच किसे दीवे दी रोशनी हो जांदी है, इसे तरह मन दे विच जो भरम दा अंधेरा है, जो मोह दा अंधेरा है, जिस कारण ए मन दुखी है, हजूर कहंदे ने वाहिगुरु दा नाम ही इस मन विच रोशनी देन वाला है, आत्मा दा संचार कर देन वाला है। तप्त मैं ठांड वरताई, अनंत भया दुख ना।

रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलहारी निर्गुण आप सरगुण भी ओही निरंकार भी सच है कि उसका साकार रूप भी सच ही है कलातार जिन सगली मोही निराकार तो ओ आकार रूप धारण करके सतगुरु अखवाए कि सतगुरु ने अपनी पवित्र बाणी सत दी बाणी कह के सब जिया नु मोह लिया है अपने चिरत प्रभ आप बनाए ए अपना चोज वाहिगुरु जी आप ही कर दे हन अपनी कीमत आपे पाए आप अमोलक हन अपने आप नु ओ आप ही जान दे हन हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए हरी तो बिना होर कोई दूजा है नहीं सब थाई सब जगह ते आप वाहिगुरु ही समाये हुए हन ओत पोत रविया रूप रंग पय प्रकाश साध के संग ताने पेटे दे न्याई अंदर भी वाहिगुरु बाहर भी वाहिगुरु रूप भी वाहिगुरु दा रंग भी वाहिगुरु दा कण कण विच वाहिगुरु जी आप ही समाये हुए हन पय प्रकाश साध के संग ए ज्ञान मन नु सतगुरु की कृपा नाल होया सतगुरु की दया मेर नाल होया रच रचना अपनी कल धारी वाहिगुरु जी ने इस संसार दा तमाशा बनाया ए जगत दी रचना कीती ते इस रचना दे चलावन वाले पाप आप दीना नाथ होए आप इस सारी सृष्टि नु अपने ही स्वरूप विच उन्ना नथिया होया है आप ही सब जिया दे सूत्रधार भी हन अनक बार नानक बलहारी गुरुदेव गुरु अर्जन साहिब महाराज जी फरमाउंदे हन असीं ऐसे वाहिगुरु जी तो सदके सदके जाने हां सदके सदके जाने हां सदके सदके जाने हां सदके सदके

सत विचार कहे जन साचा, जिस मन विच सच वस गया है उन्हां गुरमुखां प्यारियां ने सच दा ही विचार आखिया है। जन्म मरे सो काचो काचा, जिस मन विच सच दाम नहीं वसिया उसे कच्चा रह गया है, जन्म मरण विच डुब के मरेगा। आवागमन मिटे प्रभ सेव, जीव दा आउना ते जाना पाव सागर मिट जावेगा जे ए वाहिगुरु नाम जपे। आप त्याग शरण गुरुदेव, अपने आप दा त्याग करके हाँ रह तो के गरीबी धारण करके वाहिगुरु सतगुरु देव दी शरण नु प्राप्त करीदा है। इयों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। इदा कीतियां रतना जैसा जो जन्म मिलिया है अमोलक, उसका उधार हो जाएगा। हर हर नाम वाहिगुरु जी का सिमरन करन नाल जो प्राण पति है, प्राण का जो दाता है, जो जीवन का दाता है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अनको पावन छूटन हारे, सिमरत सासत बेद विचारे। हे मेरे भाई, ये विचार करके वेख लवे, अनेका ही उपावां करन नाल तरीकियां नाल तू बंधन मुक्त नहीं हो सकेगा। सिमरत शास्त्र वेद विचारे, सिमरतियां शास्त्रां ते वेदां दा इही विचार है कि वाहिगुरु जी दा नाम ही सत है, सत नाम वाहिगुरु ही जपिया जावे। हर की भगत करो मन लाए, ताते वाहिगुरु नाम मन करके प्रेम नाल जपिया जावे। भाई रे राम कहो चित लाए, मन बंशत नानक फल पाए। इयों मन दी चाना जो वाहिगुरु नू मिलदी है वो पूरी हो जावेगी।

आप भी नाम जपो ते अपने संगियां नू साथियां नू प्यारियां नू नाम जपावो। सुनत कहे तो रहत गत पावो। वाहिगुरु नाम कन्ना नाल सुनो रसना नाल बोलो। इस रहनी विच रह के आप मोक्ष नू प्राप्त होवोगे। सार भूत सत हर को नाओ। सर्व श्रेष्ठ वाहिगुरु जी दा नाम ही सत है। सहज सुभाए नानक गुण गाओ। मन किन्ना गुणा विच रहिंदा है। मन तीन गुण अतीत वाहिगुरु नाम नाल हुंदा है। ते चौथे पद विच रोक के मन सहज अवस्था नू प्राप्त करदा है। सहज अवस्था विच मन अडोल हुंदा है। ते मन जदों अडोल हुंदा है उदों वाहिगुरु नाम मिठा लगन लग पैंदा है। हजूर फरमाउंदे ने गुरु अर्जन साहिब मन करके प्रेम नाल वाहिगुरु जी दा नाम सहज सहज करके प्रेम नाल जपिया जावे। हर का बलोवना बलोवो मेरे भाई। सहज बलोवो जैसे तत न

गुण गावत तेरी उत्तर समैल। वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया मन और तन दी मैल उतर जांदी है। बिनस जाए हौ मैं बिखु फैल, हौमे दा अडंबर जो इस दे मन नाल बनिया होया है ओ उतर जाएगा। पाव नाम दे जपन नाल जीव हौ तो रहत हो जांदा है। ओए अचिंत बसै सुख नाल, जदो मन फिक्र तो रहत होवेगा, डर तो रहत होवेगा, इस अवस्था विच सुख मन दे कोल आवसणगे। सास ग्रास हर नाम सुमाल, ताते उठदियां बैठदियां हर वेले वाहिगुरु जी दा नाम जपया कर। छाड सियान पुसगली मना आ, ए अज्ञानी मन तू सियाणपा छड दे। साध संग पावे सच तना, सतगुरु नाल प्रीत कीतियां, सतगुरु दी शरण विच आया, सतगुरु दी आग्या विच रहां, तैनू सच्चा तन नाम दे तन दी प्राप्ति होवेगी। हर पूंजी संच करो व्योहार, अजही रहनी रहो कि हरे नाम दी पूंजी प्राप्त हो जाए। नाम दियां दाता वाहिगुरु जी आप कृपा करके बख्शण। इहां सुख दरगह जयकार, इस वाहिगुरु दे नाम दी दात नाल तेरा लोक और परलोक सुहेला हो जावेगा। सर्व निरंतर एको देख, मन दी अख खुल जावेगी ते वाहिगुरु जी आप ही सर्व कला सम्राट ने सर्व थाई समाए हुए ने। इदा मन दी अख नाल तू वाहिगुरु नू अंदर और बाहर सबनी थाई वेख सकेगा। कहो नानक जाके मस्तक लेख, जिन्हां दी भागां विच ए लेख लिखिया हुंदा है उन्हां नू वाहिगुरु जी दा दर्शन प्राप्त हो जांदा है। एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे।

0: एको जप एको सालाह। हे मन तू एको ही वाहिगुरु दा सिमरन कर ते एक वाहिगुरु दे ही गुण गाउंदा रहो। एक सिमर एको मन आहे, एक वाहिगुरु दा ही मन विच आसरा रख के उस दा ही नाम सिमरन करया कर। एक के गुण गाओ अनंत, ओ वाहिगुरु गुणी निदान ने इसलिए उना दे सदा सदा गुण गाओ। मन तन जाप एक भगवंत, मन और तन करके उस वाहिगुरु दा ही सिमरन करो। एको एक एक हर आप, वाहिगुरु जी आप इको ही हन ते सदा सदा इको ही रहंदे हन। पूरन पूर रहो प्रभु व्याप, हर थाई पूरन ने ते हर जगह ते व्यापक ने। अनक विस्तार एक ते पए, वाहिगुरु जी एक भी हन ते अनेक भी हन। एक अराद परा छट गए, एक वाहिगुरु नु अरादिया सारे ही कीते हुए पाप दूर हो जांदे हन। मन तन अंतर एक प्रभ राता, जिस मनुख दा मन और तन वाहिगुरु जी दे नाम विच रंगिया गया। गुरप्रसाद नानक एक जाता, गुरु दी कृपा नाल उस मनुख ने वाहिगुरु जी नू जान लिया है, पछाण लिया है।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: Thank you.

பாமன் புகழா மேலே பெறுவ அவர் கேட்டேதானே கவியில் கடல சத்தோசனை சாரையான் உஷ்ணா தாரு கேட்டா தானே சாரையான் முகாம் போலி ஏக சாரையான் காணா ஏக உஸ் டிக்கானே தே மனோ பகுத் நேரே ஹை உஸ் டிக்கானே தே பத்தர் பகுத் தூர் समय की दूरी भी है स्थान की दूरी बड़ा समा लगेगा उसमें वनस्पति बनने बड़ा समा लगेगा उसको पशु पक्षी बनने बड़ा समा लगेगा उसको मनुष्य बनने मनुष्य मुकाम तक पहुंचने वास्ते मुकामी होने वास्ते परमात्मा होने वास्ते समय भी नहीं रहा समय तो उसे निकलना है होने मिला आज मिला हुआ शेख पर मुझे को मौका मिले इंद्र बकरी प्यास से है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर एक तड़प ना हो ध्यान न सुनना मनुख को ऐसा जीवन चाहिए जिस मौत ना हो ऐसे जीवन का ना ही परमात्मा है और किसने परमात्मा दे मनुख को ऐसा सुख चाहिए जो कभी दुख दे ना बदले ऐसे महासुख का ना ही परमात्मा मनुख को ऐसा रस चाहिए जो कभी बेरस ना हो ऐसे महारस का ना ही परमात्मा मनुष्य को ऐसी खुशी चाहिए जो कभी कम नहीं जाना है

ऐसी प्रभुता का नाम ही प्रभात है, और ऐसी प्रभुता, ऐसा महारस, ऐसा महाआनंद, ऐसा महासुख मनुष्य समय च लगता है, संसार में लगता है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ही नहीं। संसार का हर सुख दुख दे बदल जाता है, हर जन्म मरण दे बदल जाता है, हर जवानी बुढ़ेपे बदल जाता है, हर हादसा रोने से बदल जाता है, हर इज्जत बेइज्जती बदल जाता है। भगवान का करना कहते हैं विद्वान दिन रात बराबर ही होते हैं, कभी रात बड़िया हो जाए, दिन छोटे हो जाए, कभी दिन बड़े हो गए हैं, रात छोटिया हो जाए, साल भर भी उस लाइए से बराबर कोई मनुख कि दुखी होगा वेख लेना सुखी कितना बस उतना ही बराबर बराबर। कोई मनुख कितना खुशहाल है वेख लेना बदहाल कि दोनों बराबर होते हैं, जितने इज्जत उतने वेद, जितना सुख उतना दुख, जितना माता जो नफे बहुत बड़े ने तो नुकसान भी छोटे ने और नुकसान भी बहुत बड़े, बराबर चल बराबर चलता है। पर मनुख में एक चाहिए, जन्म चाहिए, मरण जवानी चाहिए, बुढ़ापा है, सुख चाहिए, दुख है, रस चाहिए, बेरसी में खुशी चाहिए, है गम में परेशान है ही नहीं। जो इतने आके अरदास करेगा था संसार के रेंदे हैं फिर सुख देने, पर जे अगों अरदास होया करता है उसका प्रमाण है चक मार, चक मार बोल मैं बड़े सामने रखा नानक बोलन चखना ये बोलना चक मार, नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगे सुख, सुख दुख दौवे कपड़े पहले जाए मनोज चक मार ये प्रभु सिर्फ जन्म जीवन देनी मरण नहीं, सिर्फ जवानी देनी बुढ़ेपा नहीं। महाराज कहने चक मारता है कितनी दुनिया चक मारती है, कोई मंदिर कोई मस्जिद कोई गुरुद्वार कोई चर्च दे पता नहीं बर्दाश्त करो तो मैंने पता नहीं कड़े बर्दाश्त की सीमा कितनी है, कोई पाठ करके चक मारता है, कोई नमाज पढ़ के चक मारता है, कोई प्रेयर करके चक मारता है, और इसी तरीके के नाम कोई पूजा करके चक मार लोगी चक मार नाम तो बोलना चखना ये चक मार कि दुख छद मंगे सुख हे प्रभु सिर्फ सुख दे, तेनों पता ही नहीं संसार प्रभु ने दो रंगी बनाया एक रंगी नहीं, जितना सुख उतना ही दुख, जितनी इज्जत उतनी बेइज्जती, जिन्हों के आले दुआले जिंदा बाद के नाने लगते हैं मुर्दा बाद भी उन्होंने आदि सज्जन मैं कह लगा बड़े कबोल बोलते हैं बड़े बारे कई बेइज्जती करते हैं, मैं कई बेचारे हाथ भी जोड़ते हैं इज्जत भी जन्म बराबरी कर देते हैं, इस तरह ही नवे तो कोई नहीं मिल जन्म होया तो मरण हो, जवानी मिली थी बदले भी बुरे थे, रस बेरस हो जाता है, इज्जत बेइज्जत हो जाएगी, ना कोई नुकसान हो जाए, दिन रात बदलता है, दिन बदलता
ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਬਦਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਦੇਣੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣੀ ਮਰਨ ਨਾ, ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ ਦੇਣੀ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਚੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ ਗਿਆ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬਿਰੋਲੇ ਨੀ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਕਥਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੀਰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲੈ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਦਾੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਜਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢੇ ਪਾਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ। ਬਲਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਹਾਸੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਥੋਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਰੋਣਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਸਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਸੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੇ, ਰੋਣੇ ਬੜੇ ਗਏ, ਥਮਤੇ ਥਮਤੇ ਥਮੇਂਗੇ ਆਸੋਂ, ਰੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ, ਰੋਣਾ ਰੋਕੋ, ਹਸਤਾ ਹਸਤਾ ਰੋ ਗਹਿਰਾ, ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ,
संसार गौरंगी प्रभु ने बनाया है, समा गौरंगी मनुख ने बनाया है। जो मिलता है विछड़ है, समय जो मिलता है समा विछोड़ के रहता है, समय जो उपलब्ध होता है हथों खो दे रहता है। मिलना विछड़ना, सुख दुख, जन्म मरण, आशा रोना, ये दोनों इकट्ठे। मनुख की मुसीबत भी है, एक कबूल है एक नहीं। जन्म के कबूल है, मरण नहीं। मरते दम तक लोग जन्मदिन मनाते, कौन मनाते? बच्चा जन्मदिन मनावे चलो माफ किया जा सकता, अब जो बेचारा नहीं मनाता वे मां बाप ही मनाते। एक जवान जन्मदिन मनावे महामूर्ख होवे, और एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे सिवाय फिटकार के नानता तो उस दिन हो गई भाई। जन्मदिन जमया से 80 साल हो गए, मरण दिन के बिल्कुल नेड़े, 100 दिन आया नेड़े। धर्म की यात्रा जन्मदिन को याद करने नहीं आती, बल्कि किस तरह आती है? पहला मरण करो जीवन की छा और सबन के रहने का, तो आओ हमारे मौत में कबूल आ। पर मनुख न जन्म कबूल है, मरण नहीं। सुख कबूल नहीं, दुख नहीं, खुशी कबूल है गम नहीं, नफा कबूल है नुकसान नहीं, जवानी कबूल है बुढ़ेपा नहीं। भारत के हम सारे पता चल गया, मेरे नाम के सारे साथी गंडिया चल रहे। इस वास्ते मैं नाम लैन के भी कोई संकोच नहीं। भाई कल्याण सिंह मेरे नाल 35 साल तो चल रहे, बड़े प्रसिद्ध कीर्तनिए, पड़ताल भी गा लेते हैं, और अब भी कंठ जवाना हो गया प्रभु जी का। इंडिया में रेलवे ने सीटा बुक करानिया वरना तो अपनी उम्र भी लिखनी पैनी, शायद आपको पता हो जरूर बुक किए कराई होनी। गड्डिया सीटा बुक करानिया वन अपनी उम्र भी लिखनी पैनी। अमृतसर तो बॉम्बे जाना सी तो गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस सीटा बुक करानिया सन, दो तीन फार्म की चारी बंदे ने कठे जाना सी। इसके बाद उम्र वेखा ने 2 साल ने 60 साल लिखे कि मैं तो भाई कल्याण सिंह जी जी मैं भूलता नहीं, कम से कम 15-16 साल तो मैं थानू देख रहा, उम्र 60 साल ही लिख रही अगे। पिछले साल भी मैं देखे उन्होंने नहीं पता कि मैं इससे ध्यान रखे, कुदरती ध्यान पहले ऐसे। पिछले साल भी सच और सौ पिछले साल मैं तो सच से ही रुक गए और गल की है कहता सच से ही चंगे नहीं कि तुम बुढ़ा हो गए, अरे सच होके भी बुढ़े ने और 15-20 साल तो सच लिखी जा रहे। फिर मैं एक नुकता मिले, हर मनुख अपनी उम्र घटा के दसता है। मैंने नुकता मिले जी 80 दे 70 दस दे 70 दे 60 दस दे 60 दे 50 दस दे 50 दे 40 दस दे 40 दे 30 दस दे बीबियां 30 तो अगे जा। जवानी कबूल है बुढ़ेपा नहीं, जन्म कबूल है मरण में, सुख कबूल है दुख में, हंसे कबूल ने रोने ने। महाराज कहने चख मार ना ने तो बोलने चखना, जवानी कबूल की लिए तो बुढ़ेपा कर कबूल की। जन्मदिन मनाता पाया मरण दिन चेते, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ा हो सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास
फिर मैं नूहेर उत्तर पड़े सामने रखा जीवन दे प्यास फिर परमात्मा भी है। ऐसा जीवन चाहिए जिसे मरण ना हो, ऐसे जीवन का ना ही प्रभाव हो। ऐसा रस चाहिए जो कभी बेरस ना, ऐसे महारस का ना ही परमात्मा है, वरना संसार में हर रस बेरस हो। ऐसी जवानी चाहिए जिसे बुढ़ेपा, ऐसी इज्जत चाहिए जिसे बेइज्जती ना हो, और ये दोनों समतल लेंगे। जितना मनुष्य सुखी है समझ लेना उतना ही दुखी। जितने किसी मनुख की उपमा है और सही अंदाजा ला के लिया उतना उतना ही लेंदा है, और भी नहीं है संसार का नहीं है। जितना रस है फिर बेरसी भी उतनी, जितना नफा है फिर नुकसान भी दो रंगी। आपकी यात्री अस्तरा गुरु ग्रंथ साहब ने मैं जल पढ़ना कबीर नामदेव रविदास शैली हैरान होना है भी बंटे हुए इस मामले। कबीर कहता है सुख मांगत दुख आदल आवे सो सुख हमो ना मांगया, हे प्रभु कम से कम मैं तेरे को सुख नहीं गलत नहीं। क्यों? मैनू पता चल गया जितना सुख मिलता है नाल उतना ही दुख आ, पता चल गया बड़ी हिम्मत। सो सुख हमो ना मांगया आवे, जेड़ा सुख संसार हे परमात्मा तेरे को मंगता है मैं नहीं मंगता। गलती है सारे सुख मंगते क्यों क्यों नहीं मानता? कहता जितना सुख आंदा ना उतना ही दुख आंदा। सुख ना देखना किसी के समझ लेना उतना ही दुखी है जितना सुख, पर असं सुख देख लेने। बाबे फरीद जैसे जरा सुख को ऊंचा कर दें कोठे से चढ़ के देख लें दूजे आया और कह दें उच्चे चढ़ के देखा मैं जाने दुख मुझको दुख सब आया कि हसते मुस्कुराते चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे कि चिकने चुपने मथे पता नहीं कितना मुरझाना छुपाई बैठे कि खुशहाल होने मरम पता नहीं अंदर कितनी बदहाली छुपाई बैठे। खुशहाली देख लेने या बदहाली में किसी मुस्कुराहट से भूलना जाना कि चिकने चुपने मत्थे देख के किसी भूलना जाना बड़े सुखी होंगे नहीं, जितने सुखी ने उतने ही दुखी ये दोनों इकट्ठे चल। अज जिसने मैंने क्या गल मेरी समझ आ रही गहने जी कुछ बंदे बड़े डेंदा करते सन, मैं कुछ उपमा भी तो कर लेना तो हो बराबर चलती है गलत एक मेरी नवी गल है। जितना सुख मिलता है उतना दुख मिलता है, जितना नफा आता है उतना नुकसान होता है। जन्म होया तो मरण होगा, इज्जत है बेस्ती पुस्तक है निंदा कट्ठी कर संसार कट्ठी। कबीर कहने मैंने उस्तत नहीं चाहिए क्योंकि उस्तत चाहिए तो फिर निंदा भी आ जाएगी। मैनू ये जीवन नहीं चाहिए तो फिर मरण भी आ जाएगा। हे प्रभु मैं सुख नहीं मांगता फिर दुख भी आएगा, दुख भी कोई पाना पाएगा। कम से कम परमात्मा मैं तेरे को सुख नहीं मांगता, बड़ी हिम्मत की गल। पंक्तियां मैं फिर सुना हूं कि बंदा जरा सुख नहीं मंगता, सिर्फ सुख मंगने वाले गुरु नानक कहने ने चक मार यथारत बोल मैं तुहाडे सामने रख रहा। पहले पहले महापुरुष बड़े लालच देंगे भी किसी तरीके रब ने मारन से चल पे
ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਟ ਅਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਠਾਈ ਦੇਣੀ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਮੇਲ ਲਓਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਮਿਠਾਈ ਦੇਈਏ, ਕੁਝ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆਖੇ ਲੈ ਮਿਠਾਈ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਕ ਮਾਰ, ਚੱਕ ਮਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਬੋਲ ਨਾ ਚੱਕਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਬੋਝਾ ਬੋਝੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਸਿਰ ਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਇਮ ਬਰਾਬਰ ਨਾਨਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਟਟੋਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਮ ਜਿਉਂ ਦੌਲਤ ਨੈ ਸੁਰ ਰਾਮ ਭਜਨ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਕ ਖੋਲ ਲਾਜ ਨਾ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ ਨਾਮ ਕਹਾ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਤ ਕੁਮਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿ ਕਰਨ। ਸੁਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ, ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਕਦਮ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦਮ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਿਟਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਕਿਸਦਾ ਮਿਠੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਸਦਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ। ਮਨ ਮੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਾ ਲਈ ਦੇਖੇ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਲ ਦੁੱਖ ਆਦਲ ਆਵੇ ਤੋ ਸੁੱਖ ਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਆਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿਣ, ਜਿਤਨੇ ਲੜਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੀ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਨਰ ਉਤਨੇ ਮਰ ਗਏ,
برابر ہے, سمتل ہے, ایسا اس نے بنا کے رکھے. کبیر کے جتنا سکھ ہوئے گا پھر اتنا ہی دکھ, جتنی اپما ہوئے گی پھر اتنی نیند. سانو اپما ہی نہیں چاہیے, گل ختم, سانو سکھ ہی نہیں چاہیے. بڑی ہمت, بڑی ضرورت. گرو رام داس جی مہاراج کہ کوئی بھلا کہو بھاوے برا کہو آمدہ نہ دیے ہوئے دس بندے بلا بلا آدھے اپنے کول رکھ, دس بندے برا برا آدھے اپنے کول رکھن. اسی نہ کسی کا بھلا بھلا لینے ہاں نہ کسی کا برا برا. بلکہ گرو رام داس کبھی بھی بڑی ضرورت ہے. پربھو میں سکھ نہیں مانتا کیونکہ مجھے پتا چل گیا سکھ کلا نہیں آتا, نال دکھ لے کے نفع کلا نہیں آتا, نقصان کا بھے نال لے کے نہیں مانتا. دوسرے بھگت نے نام لے وہ بالکل کبیر تو الٹ بولتے, بالکل الٹ. نام دیو کہتے ہیں جے راز دیں تا کمن بڑائی, جے بھیک منگائے تا کیا گھڑ جائے. اے پربھو تو چھترپتی راجا بنا کے سنگھاسن تے بٹھا دینا تے ساڈا ور کی جانا ہے, جے تو در در دا بھکاری بنا دیں تے ساڈا گھٹ کی جانا ہے. سانو راجا ہونا بھی قبول, سانو بھکاری ہونا بھی قبول, سانو سکھ بھی قبول, سانو دکھ بھی قبول, سانو نفع بھی قبول, سانو نقصان بھی قبول. اسی جوانی بھی قبول کرتے ہیں, بڑھےپا بھی قبول. یا تے بندہ دوہاں کا تیاگی ہوے یا دوہاں نوں قبول کرے, پر دبدا بندے لیے ایک قبول ہے. جنم چاہیے مرن نہیں, بڑھے بھی جنم دن منا رہے. حالانکہ حیرانگی ہوتی ہے قبر کے بالکل نیڑے پہ, چیتا کے بالکل نیڑے, کیونکہ چیتا کے نیڑے جہاں نے جنم دن منا رہا ہے. ایک چاہیے بس, کتوں نہیں دبدا کھڑی ایسا سمے ایک دن ہے. پربھو نے جو ہے بنایا. تھی آخو گے کہ نام جپنا, یہ نام جپنا دکھ سکھ تو اچا اٹھنا ہے, نہ کہ نقصان تو اچا اٹھنا ہے, نندا اوتر تو اچا اٹھنا ہے. کسی کو کہہ دینا کہ سنسار تو اچا اٹھ گیا, یہ سنسار تو اچا اٹھ گیا. کوئی نفع ہو گیا خوش ہو رہے, نقصان ہو گیا رو رہے, یہ سنساری جیو کے لکشن سنساری. جب کس باغ تب گرو گرد ہے, مایا گئی تب روبن نگر ہے سنساری. کچھ مل گیا خوشی نہیں, کچھ چلا گیا غم بھی. جے راج دین کا کمن وڑائی, اے پربھو ساری کہڑی گل کی وڑیا ہے, جی چھترپتی راجا بنا دیں ساڈا ود کی جانا ہے, جی تر در کا بھکاری بنا دیں ساڈا گھٹ کی جانا. جتنے سوکھے ڈھنگ نال میں کہہ رہا کہ کھیڑ اتنی سوکھی نہیں. جب کر کے منک ان دونوں کو اچھا اٹھ جاتا, جو دکھ ہے دکھ نہیں بنا, سکھ سنے اور بہ نہیں جاتے, کنچن واٹی بان ہے. پرماتما دکھ سکھ تو نرلیپ ہے, جس دن منک دکھ سکھ تو نرلیپ ہوں پرماتما ہو جاتا ہے. پرماتما ہونے واسطے پھر جپ ہے, جاگت جوت جپے نس واسطے ایک بنا من لے کے نام پورن پریم پرتیت سجے برت گوڑ مڑی مت بھول نہ مانے. تیرت دان دیا آدت سنجم ایک بنا ہے ایک پچھانے, پورن جوت جگے گھٹ میں تب خالص تاہن خالص جانے. کتنا تھوڑا جہا پہلو میں کھول دیا, چونکہ کچھ کرم نو ہی کرم کہنے, کرم کا مطلب ہے کچھ کرم کی کر رہے ہیں, کی کرم. کرم لفظ فارسی کا ہوئے نا, اس ارتھ بنتے ہیں بخش پلانے سے, خدا کا کرم ہو گیا بخش ہو گیا.
कर्मकंड की वाणी जो बख्शिश का खंड पर कृत कर्म के विचरे कर कृपा मेरे और कीते कर्मा करके विचरे कर्मे या तो अपने कहने देखे इतने कर्म के अर्थ ने कृत कर्म उत कर्म के अर्थ ने बख्शिश रहमत। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अगर भाषा का बोध ना हो शब्द इको ही होता है संस्कृत के उस शब्द के होर अर्थ ने फारसी के होर अर्थ ने दीन विसारे हो रे दीवाने दीन विसारे इतने दीन के अर्थ धर्म तुझे धर्म ही बुला सके तूरा सौदे जानिए जो लड़े दीन के है दीन के अर्थ धर्म नहीं जो कमजोर की खातर लड़े कमजोर की मार दीन का मतलब कमजोर निमाना है दीन ने भी विपाल करे इंसान को गरीब मर दीन कमजोर पाक लवज उर्दू फारसी का हो अर्थ ने पवित्र था इसी साल से मुसलमान ने मुल्क वंड के पाकिस्तान पाकिस्तान के अर्थ साफ सुथरा इलाका साफ सुथरा मुल्क पवित्र मुल्क। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दोवें भाषावां के रूप में यह शब्द आया एक वस्त्र बूझे तां होवे पाक बिन बूझे तुम सदा ना पाक एक नु जान लवे ते पवित्र रहने ते पवित्र पाक दे अर्थ पवित्र पर पंजवां पाया ब्रिज तां होवा पाक पवित्र पंजवां ग्यो पाया गया ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਭੋਜਨ ਪਾਕ ਸਾਲ ਭੋਜਨ ਗਰ ਕਿਚਨ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਭੋਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਹੋਰ ਬਣ कर्म सिद्धांत मनुख नाल जुड़ता है और मनुख कर्म करके भगवान बनता है कर्म करके शैतान कर्मा नाल दो भागों में वंडिया गया है फिर मैं थोड़ा जी ने खेड़ा करके समाप्ति करूंगा ध्यान ना सुनना थोड़ी अशेष थोड़ी की गलता मैनू कहने की समर्था देगी वर्णन ज्ञान का सागर है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपने कोल दे चम्मच भी कोई नहीं दे जाओ वो जल कढ़ण दे थोड़ी अशेष ते थोड़ी एकाग्रता समर्था दे देती क्योंकि कर्म सिद्धांत पशु पक्षी वनस्पति पत्थर नाल में प्रकृति विकास दे रही कोई कर्म की जिम्मेवारी पशुओं से नहीं है सप ने डंग मार दिता है बंदा मर गया है असि कतल के दौर से सब गिरफ्तार नहीं कर सकते कि मुकदमा नहीं चला सकते तो पता ही कुछ नहीं चीर फाड़ के किसी को खा गया है आखिर हम इस मुकदमा कर रहे हैं अदालत लै जावे जेल में डकेंगे इन्हें कतल कर सके नहीं चलता उन्हें पता ही हिरन किसी के खेत ले चले गए थे सब कुछ खा गए कि हूँ चोरी के इल्जाम पकड़ी होना मुकदमा चलाई पता ही नहीं कर्म की जिम्मेवारी पशु नहीं आते कर्म की जिम्मेवारी पंछी नहीं आते वनस्पति नहीं आती कर्म का बंधन मनुख का और लाजमी से कर्म ने ही मनुख को भगवान बनाना है कर्म ने ही शैतान बनाना है खेल सरल कर्म लेकिन कर्म करना से उत्पत्ति के केंद्र से दिन है और कर्मा नु वडे आ गया है दो हिस्से शरीरक कर्म वाचक कर्म मानसिक कर्म उनके दिन है बोलना कर्म है हथा पैर करना कर्म कर्म कृत
एक मानसिक कर्म सोचना विचारना चिंतन इस हिसाब नाल ये दो कर्म बन जाते हैं ध्यान नाल सुनना मानसिक कर्म शरीर कर्म दो कर्म शरीर के कर्म से जो कर्म प्रगट होंगे वह कहते हैं कर्म कृत मन के कर्म से जो कर्म चलता है वह कहते हैं कर्म विचार कर्म विचार कर्म किरदार कर्म नियत कर्म कृत शरीर के कर्म से जो प्रगट हो गया है कर्म बोलन के राही हथा पैरों के राही कर्म कृत मन जो सोचता रहा विचारता रहा कर्म विचार शरीर के कर्म से जो प्रगट हो गया है कर्म किरदार इस हिसाब न फिर मनुखा चार हिस्सों में वंडिया गया कि चार हिस्से थोड़े सामने रख के मैं समाप्ति कर लगा ध्यान ना सुनना तुसी किस श्रेणी आओगे इन्हों चार मैं किस श्रेणी आना कि असी खुद फैसला करना दूजा नहीं कर सकता तो खुद का मनसब हो फिर सभी कहना अपना मनसब आप बन अपनी जजमेंट आप दूजे को क्यों करा दूजा की जाने तुम्हें दूजा तेरी सोचनी तक नहीं पहुंच सकता दूजा दूर है अपना फैसला आप कर चुकी है तो खुद का मनसब सब अपना मनसब आप बन कर्म सिद्धांत के मुताबिक मनुखता को चार हिस्सों में वंड दिया गया पहली श्रेणी और कर्म किरदार पवित्र है ठीक है कृत पवित्र है पर कर्म विचार भी शुद्ध है सोचता भी ठीक है करता भी ठीक है नियत भी ठीक है कृत भी ठीक है करनी भी ठीक है सोचनी भी ठीक है संसार देखता है कानून देखता है मेरी कृत ठीक है परमात्मा देखता है मेरी नियत परमात्मा उस ढंग नाल फैसला नहीं करता जिस ढंग नाल अदालत कर दी या समाज कर दिया समाज देखता है मैं कीता की है परमात्मा देखता है मैं सोचा की है कानून देखता है मेरी करनी की है परमात्मा देखता है मेरी सोचनी की है परमात्मा के देखने का ढंग हो समाज देखता है कानून देखता है मेरी कृत की है प्रभु देखता है मेरी नीयत समाज के रहना तो कृत तो ठीक रखनी पैंती है समाज ठुकरा दे संसार में रहना तो कृत तो ठीक रखनी पैंती है कानून है हथकड़ियां ने जेलां है कर्म कृत कर्म नियत पहली श्रेणी के वो मनुख आ जाते हैं कि कृत भी ठीक है नियत भी ठीक है करते भी ठीक है सोचते भी ठीक है करने भी ठीक है सोचने भी ठीक है संसार भी कबूल करता है निरंकार भी कबूल करता है लोग देख भी मान पर पाते हैं कभी कृत ठीक है पर लोग देख भी सम्मान पाते हैं कभी नियत ठीक है बड़े ध्यान न सुनना ये पहली श्रेणी है ये पहली श्रेणी कुछ करोड़ों से एक होता दूसरी श्रेणी नियत से ठीक है कभी कभी कृत लग रहा है सोचनी से ठीक है कभी कभी करने ही गलत हो बड़े ध्यान ये दूसरी श्रेणी परमात्मा की निगाह के काबले कबूल ने काबले माफ ने हो सकता है समाज से कानून सजा दे क्योंकि फिर ठीक नहीं ये दूसरी श्रेणी
नियत से ठीक है फिर तो ठीक नहीं, कभी कभी फिर गलत हो जाए। विचार से ठीक नहीं, कभी कभी किरदार गलत पेश कर देते। सोचने से ठीक है, कभी कभी बोलने गलत हो जाती, बोलना भी गलत है। ये दूसरी शहर परमात्मा सीने नाल लाद है, हो सकता है समाज ठुकरावे फिर कानून जेल दे पा। दस बारह कदर है जिस बेदी ने मेरे से बनाया, अजकल एडमिंटन है, उन्हें एक मुकदमा यह भी मेरे से बनाया, तुम लोगों शस्त्र चुकने वास्ते प्रेरणा देती। मैं कहीं तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जफरनामे का बहुत सुनाया, चमकाल समा हीर दे कर गुजर अलावस लंबा चमकीर दस। जज को भी कोई नहीं पता कि मौलवी मंगाया गुरु फारसी के पंडित मंगाया भी है गुरु ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह की बाणी के झूठा है, लोगों शस्त्र चुकन की कहना एक केस बनेगा। दस साल में बालबन दस पंद्रह मुकदमे फसया गया, अज के प्रबंधक हाथ जोड़ के मिलते हैं, उदों दूरों देख के मैंने एक पास हो जाते सन, ये पते बुलाई दी गई मौल बना किसी ने नहीं। मैं जिंदगी देखी सारा दिन मैं कोर्ट में कला बैठा हूं, या मेरे न कभी कभी बाल कल्याण मिल जाए। मैं प्रोफेसर दर्शन सिंह ने इस तरह देखे हर जेल में मैं मिलन गया, कचहरा पाया छोटी बने निका जहा रुमाल सिर पर, मैं क्या जो भी कपड़े ने मैं जेलर तो कुछ है तेरा कहने के हां इस तरह के कैदियों से कपड़े नहीं है कि मेरे खुदकशी ना कर दस्तार ना चोले ना पजामे छोटा कपड़ा देने ताकि गल ठंडा ना हैरानगी हुई है। मुलाकात जगले तो बाहर दो मैडम ने कैसी कट्ठे बैठना चाहने के लिए नहीं फल लै गए सी ठेला में भाई कल्याण के मुद्दा में लिया गड्डी च बाहर पिया जेलर ने कह नहीं तुम गलबात कर सकते हो दस मिनट कुछ दे नहीं सकते। प्रोफेसर साहब कहने की ज्ञानी जी छह महीने से कुछ ही मिलने वास्ते आए हो कोई नहीं आया ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਖੁਦ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਦਿਲ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਖੈਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮੌਲਵੀ फारसी के आलम कट्ठे कीते गए पटियाला हाउस अदालत में भी ये जो मस्कीन कहता है गुरु गोबिंद सिंह के बोलने के ने अपने बनाए ने आप बनाए लोगों वर्ग पसंद आए जफरनामा में रखे। हालांकि वकील तो हिंदू संदास से एक सिंह की गाली नहीं कहते रहे मुझे फिर यूपी के इलाके का बेचारे ने पता नहीं कि उसकी नीयत माड़ी नहीं मैं कहूँगा मैंने कह लगे मस्किन जी मैं तसली कर लें तसली हो उस एक केस के समय अठ साल बरी होया ग्यारह बारह चल रही है हुकूमत कांग्रेस की गई वीपी सिंह बैठे उन्होंने मेरे केस वापस लाए चंद्रशेखर बैठा उन्हें मैंने पासपोर्ट दिता जिन्होंने मेरे से मुकदमे बनाए दिल्ली के पुलिस अफसर भी सिख सन पंजाब के भी सिख एक त्रिलोचन सिंह एक बलदेव सिंह एक बेदी जो अच कर सिर्फ इस वास्ते कहना पे बोल मैं बोलिया
ہے بول غلط ہے. اس بول پہ بہت بڑی سزا مل سکتی ہے. میں نے کہا بول میرا نہیں, میں نے پارٹی کی طرح پڑھ کے سنا ہے. اج تک یہ بول پرمانک تھی, پسند تھی, سارے چنگا لگتا سی. اج بھی ہو گئے, اج تک کوئی اعتراض نہیں سی اس بول پہ. مدن موہن مالویا کہنے سن کہ اس طرح بھی اکھنا تو لکھنا چاہیے. سنکار ہی دے گا گز حلال بولنا مشن چاہیے. سوامی وویکانند کہہ رہے ہر گھر ایک بچہ ہونا چاہیے. اج بھی ہو گئے. بولنا کرت ہے, سوچنے سے ٹھیک ہے, کبھی کبھی کرنی غلط ہوتا ہے, کسی بھی بولنی غلط ہوتا ہے. نیت سے ٹھیک ہے, کبھی کبھی کرت غلط ہوتا ہے. وچار سے ٹھیک ہے, کبھی کبھی کردار غلط ہو سکتا ہے. کردار غلط ہو سکتا ہے. پرماتما معاف کرتا ہے کیونکہ وچار ٹھیک رہے. سماج معاف نہیں کرتا کیونکہ کردار ٹھیک نہیں. پربھو معاف کرتا ہے کیونکہ نیت ٹھیک ہے. قانون معاف نہیں کرتا کیونکہ کرت ٹھیک ہے. قانون سماج دیکھتا ہے میں کیتا کی ہے, پرماتما دیکھتا ہے میں سوچیا. اس کا خرچ نہ پینا کہ جس ڈھنگ نال سماج سے قانون فیصلہ کر رہا ہے اسی ڈھنگ نال پرماتما کرتا ہوئے گا. پتا ہی نہیں اس کا خرچ نہ پینا. پھر اہنکار نہ سمجھ لینا. میں اپنے انبھو کے آدھار پہ کہنا اس طریقے نال فیصلہ نہیں کرنا. پرماتما دیکھتا ہے میری نیند ہوتی ہے, سنسار دیکھتا ہے میری کرت ہوتی ہے. انہوں نیت دکھائی نہیں. کس طرح میری نیت دیکھو گے؟ میں تھوڑی نیت کس طرح دیکھوں؟ میرے اندر جو وچار چل رہے ہیں سنوں کی پتا ہے, تھوڑے اندر جڑے وچار چل رہے ہیں میں کی پتا ہے, پر پرماتما نے پتا, گرو نے پتا. بھائی گرو راس کہنے نے انتر جانے سن کمپٹ ہوں انتر گر. اے پربھو مینو کمبنی چڑ جاتی ہے جب مینو پتا چلتا ہے تم میرے وچار بھی دیکھنا, تم میری سوچنے کو بھی میں تو کم جانا. انتر جانی سن کمپٹ ہوں انتر گر, پگٹ پاون سن آسرو پردار. اے پربھو ایک آس ہے کر کے میں آ گیا تو پگٹ پاون بخشے میں پرنپور کے اندر بھی جان. میں پھر عرض کراں میری نیت کی ہے سانو کی پتا, تھوڑی نیت کی ہے میرے بارے میں کی پتا. میں کی سوچتا رہنا سانو کی پتا, تھی کی سوچتے رہتے مینو کی پتا. پرماتما ایشور سنسار دیکھتا ہے میں کیتا کی ہے, پرماتما دیکھتا ہے میں سوچا. یہ دوسری شرینی سوچنی سے ٹھیک ہے, کبھی کبھی کرنی غلط. دوسری شرینی نیت سے ٹھیک ہے, کبھی کبھی کرت غلط ہو جاتی ہے, پرماتما معاف کر دینا ہے. ہو سکتا ہے سماج کے قانون معاف نہ کرے, سزا دے. اس لیے میں دو ادارن بھی دوسری شرینی جڑے آنے ادارن دیا. ترتی یوگ دے اوتاری پرش شری رام انہوں نے پتا دشرت شکار کے جنو گئے شتری سن. کلویدر پاتشاہ بھی کہنے شتری کو ہو کہو بامن کو نہ چھویں پاتشاہ شکار کھیلتے سن, دسویں کھیلتے سن, رام کھیلتے سن, رام دے پتا کھیلتے سن. اس پتہ نہیں کہڑے جینی آ گئے نے سکھانا بھی جینی بنا لیا. خیر مختصر میں عرض کر رہا ہوں, میں پہلے عرض کر دیتا میری کسی بھی چار نہ کسی سہمت نہیں نا, تو میرا اہنکار نہ سمجھنا. ہوں میرا من اس طرح بن گیا کوئی سہمت ہے پاوے نہیں, پربھو کی رحمت مل جائے, گرو کی رحمت مل جائے.
બસ પગી બખશ નહીં. પછી સરળ બને સરસ કરે. દશરથ શિકાર ખેડણ લઈ નીકળે. દિન ભર હો ગયા, કોઈ શિકાર હાથ નહીં આયા, હાથ નહીં આયા. વાપસ આ રહે સંધ્યા હોઈ ગઈ. સામને સરોવર કે દશરથ નું એસા મહેસૂસ હોયા કોઈ હિરણ પાણી પી. હાલાંકિ વહ મનુષ્ય એને ઝુક કે કરમંડલ બહાર રહ્યા છે, તે દો હાથ ઝુકે દો પેર પીછે એજ લગ્યા જેને કોઈ ચોપાયા જાય. ખીચ કે બાણ માર્યા દશરથ લગ્યા, તીર દે લગ્યા ચીખ નીકળી, બડી ભારી ચીખ નીકળી. દશરથ હેરાન હો ગયા, લગતા ને કોઈ બંદા માર બેઠા. ઘોડા દોડાયા, શિકાર તક પહોંચ્યા. કેમ દેખાય બંદર તડપ રહે, શરવણ કુમાર મા બાપ લઈ પાણી રહ્યા. દારો દાર દશરથ રોંદ, હે પ્રભુ એ કીધો અંગે પ્રભુ ઘર જા રહ્યા છે, શામના વગર છે. મેરે કોલ કી અનર્થ હો ગયા, તડપદા રોના હૈ. શરવણ કુમાર નો મારના દશરથ ની નિયત નહીં હૈ, ફિર ગલત હો. શરવણ કુમાર નો મારના દશરથ ની સોચની નહીં હૈ, કરની ગલત હો. તમામ કે કાનૂન કે મુતાબક કે કાર પરમાત્મા ને મુતાબક નહીં. ફિર દૂસરા ઉદાહરણ, બારામુલા ની ગલ કશ્મીર છે. પાછળ થોડે કે સવાર સંતા દે લાલ આપણે ટિકાણે કે જા રહે. ટિકાણા આજકલ જેલમ દે કંડે કે બરા ખૂબસૂરત બન્યા. કઈ દફરદાસ કાદરી પર કહે જા રહે, રસ્તે છે એક વિરધ માતા ને ઘોડે કે લગામ પકડે. હેગી અનપડ સી ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਏ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ, ਪਤਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਉਲਟਾ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ.

अरे पतित उदाहरण तय हरन सुख सागर निरंकार, दाता पुगता देनहार तिस बिन अवर न जाए, जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए। गोविंद जस गाए।

हर राय प्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम रतन मन तन बसै तज काम क्रोध लोभ मीत मरण मिटे जीवन मिले बिनसे सगल कलेस आप तजो गोविंद पजो पाओ भगत परवेश लाभ मिले तो ताहिरे हर दरगे पतवंत राम नाम तन संचवै साच सा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रम

आए। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राख।

चार पदार्थ अष्ट सिद्ध अज नानक हर नाम पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जपसार नरक निवारे

भव बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक सादरवाल श्लोक पंच विकार।

पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो पर पंच कुसुम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलवंच नह जापे नह बूझिए नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नरंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार पौड़ी खस

नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर सो बिंदे भगत रचे भगवंत मोह मान प्रम बिनसियो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तो ताहिर है साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक क्यों निवलाए पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारणे हर हर नाम जपे श्लोक आठ पैर गुण गाये तजिए अवर जंजाल जम कंकर जो न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूरन बुद्ध कवल प्रकाश सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल तर्म पवित्र स्नान सब में ऊंच विशेष ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप करिए नानक नाम हर रंग।

पवीत, हर नाम न जपे करत विपरीत, पर त्रै रमे बके साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद, हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिस्तरत मर जमे अपागे। श्लोक दस दिस खोजत में फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने, मन संतोष ना

एकादशी निकट देखो हर राम, इंद्री बस्तर सुनो हर नाम, मन संतोष सर्व जी दया, इन विध वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

जोड़ी। द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोष है, पंचकू आत्मा हर नाम रस पोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईये। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतत उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हर सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुर

प्रफुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक तरण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरुमुख ब्रह्म पछान। श्लोक आत्म जीता गुरुमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप करे कुटुंब स्यों गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कबहु न डोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत न काट। पौड़ी पूर्णमा पूरन प्रभ एक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ। गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए। पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई शरण जोग आठ पहर नमस्कार। अथ कथा ने बूझिए सिमरो हर के चरण पथ तू उदाहरण।

चौथा सतगुरु पुरख दयाल है जिसनों समत सब कोए एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुरु विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याय गुरमुख पावे कोए। महला चौथा हौ मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उद्धार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफ सवालियो स्वरूप है जिनकी ती तिस पार लंघाई गुरमुखा नो फल पाईंदा सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहेबा वड्डी तेरी वड्याई। श्लोक महला चौथा विण नावे होर सलाहना सब बोलन फिक्का साध मनमुख अहंकार सलाह दे होमे ममतावाद जिन सालाहन से मरे खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद। महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया। तेरा शरीक को नाही जिसनों लवे लाए सुनाया तुझ जेवड़ दाता।

मन तन रत्ता रंग स्यो गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसाबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट इक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खत्म है सब दू तू चढ़ी है तू करें सो सच्चे हो।

पैर लगाने जन नानक कृपा तार प्रभ सतगुर सुख वसन। महला चौथा जिन अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवै सुहन। नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत तुरन। पौड़ी

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है, बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निर्वैर निरंकार, जिन जपिया इक मन इक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार, सतगुरु विच आप वरतदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वरतदा आपे ही गुण तास, जन नानक नाम से आए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे पावे, जो तुद सच सरा दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलक पलक मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जा सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वाव गीर सब उगर आए, ओए जेहा चित में नित तेहा पाएन, ओए पे हो जेहे दैव जाए, नानक दोही श्री खसम आपे वरत है, नित कर कर देखे।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ताके हु से तीर अल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम ते आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच प्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया सच सबद निशान, सच जे सच्चे सेव दे तिन वारी सद कुर्बान। श्लोक महला चौथा, तुर मारे पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे, जे मेलन नो बहु तेरा लोचिए ना दे मिलन करतारे, सत संगत तोई ना लहन विच संगत गुर विचारे, कोई जाए मिले हुन ओना नो

कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए दरिये ता जे कुछ आप दू कीचे सब करता अपनी कला वधाए। देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आने वाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका लेकर आए। सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए आन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर।

सखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए। जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए। पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है, सच सा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए। प्रवण जारे थारे, सच सेवै सच वणंजले, गुण कथे निरारे। सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सवारे। तू सच्चा साहिब अलख है, गुर शब्द लिखारे। रूप महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे, तिसदा कदे न होवी पला। उस दे आखिया कोई न लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला। जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या उसदा सब गया। नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मोह कड न सके उसदा काला भया। कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा, को बीजे तेहा को खाए। गला ऊपर तपावत ना हो।

ओए अग्गै कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुश्त उठाही हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही तुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही जन नानक नाम अराधू तिस अपर को ना सकाही नावे की वड़े।

पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करें। जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई। गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नाश कोई। जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे तैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले। गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले। नाम निदान हर वन जी है हीरे परवाले। विन काया जे होर से तन खोज दे से मूर बेताले। से उज्जड़ परम पवाये जो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया। नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को तोया। कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होए होए रोया। ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया। ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया। हर वेखे सुने नित सब किछ तिदू किछ गुज्जा ना होया। जैसा बीजे सो लुणे जेहा पूर्व किने बोया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया। गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यो लोहा सार संगोया। जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय। अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एव शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत। सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत। इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे। हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे। जिन निरपो नाम से आया तिनको पौ कोई ना है। हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पहनाई है जिन हर उठा मन माहे। ओए आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक को हर मेल जन

से जंतु भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी

छड़ाए हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक तो वह पाए पौड़ी। सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उधारिया, सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया, जान डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया, बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सतगुर मेली उन मुख गुरमुख नाम ते आए सी, सो करे जी सतगुर पावसी गुर पूरा करी वसाए सी, जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी, जिन रखन को हर आप होए होर के सी चक चक जाए सी, जन नानक नाम से आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा, गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वड्याई, हर राखो पैग सतगुरु की नित चढ़े सवाई, गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई, गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई, जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाव कर तिन के सब पाप गवाई, हर दरगे ते मुख उजले बहु शोभा पाई, जन नानक मंगे तूर ते

0: सागर तन परवार परियां सब जगावन आया
1: सब दोस्त गावो हरि तेरा मन जी बसाया
0: कहे नानक आनंद होआ सतगुरु।

मजबूरे बिन वंदना ने फूल चरण लागे पवन गुरु पाणी पिता माता दत्त महात्र कन्या पूरा कन्या

भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई

0: पर बल बल जाइए,
1: बल बल जाइए,
0: बल बल जाइए, बल बल जाइए,
1: बल बल जाइए,
0: बल बल जाइए, बल बल जाइए,
1: ऐ मुजुर को बल बल जाइए,
0: बल बल जाइए, बल बल जाइए,
1: बल बल जाइए, बल बल जाइए,
0: बल बल जाइए।

गुर सतगुर नाम मिलाया, गुर नाम मिलाया, गुर नाम मिलाया, गुर नाम मिलाया। मन अंत न काबू डोले, मन अंत न

0: नानक हरि का दास है,
1: जन नानक हरि का दास है,
0: जन नानक हरि का दास है,
1: जन नानक हरि का दास है,
0: गुर सतगुर के बोल को ले,
1: सतगुर के बोल को ले,
0: सतगुर के बोल को ले,
1: सतगुर के बोल को ले,
0: गुरमति हर हर बोले, गुरमति हर हर बोले,
1: गुरमति हर हर बोले, गुरमति हर हर बोले,
0: हर हर बोले, हर हर बोले,
1: बोले हर हर बोले,
0: हर हर बोले, हर हर बोले,
1: हर हर बोले, हर हर बोले,
0: गुरमति हर हर बोले,
1: गुरमति हर हर बोले,
0: बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय ब

0: एक हो रखवाला। आप सफाई हुआ, आप सफाई हुआ, आप सफाई हुआ, आप सफाई हुआ, आप सफाई हुआ, आप सगाई हुआ, सच्चे दा सच्चा ढोआ।
1: आप सहाई हुआ, सच्चे दा सच्चा ढोआ,
0: तेरी भगत मंडे आई पहला।

गुरु कोल है अमृत। गुरु हरि अमृत नाल देही नूं सिंझ दिंदा है, प्यो दिंदा है मनुखा देही नूं। गुर अमृत पिन्नी जेहुरी, गुरु ने अमृत नाल देही नूं प्यो दिता। हर अमृत बुरके बुरकन तो पाव हुंदा है छिड़कना। कहिंदे ने गुरु कोल है अमृत, ते गुरु अमृत नूं छिड़क छिड़क के मनुखा देही नूं प्यो दिंदा है, सिंझ दिंदा है।

वाणी निरंकार है, क्योंकि वाणी हरी दी है। ते इसे वाणी नू गुरुवाणी भी आखे कहते ने। क्योंकि गुरु की बाणी हरि की बाणी है, गुरु राही प्रगट हुई, इसलिए कहते हैं।

इसलिए ऐसे लोगों को सुचेत हो जेड़े गुरबाणी की बराबरता करना चाहते हैं, उन्होंने को सच नहीं पर सच का भुलेखा दे के तैनू गुमराह करना चाहते। मैं गर्ज करा जदों जदों सिख अवेसले रहे उदों उदों इहो जिहे भुलेखे अक्सर पैंदे रहे, पर जदों सिख सुचेत होए उन्होंने कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं तुहाडे नाल एक छोटी जी गल साझी करना चाहना। बड़ी देर तो सिख स्टेजां दे उपर अक्सर कहानियां सुनाईयां जांदियां ने, उन्हां विचों एक कहानी एक साखी कलयुग नाल संबंधित है। ये कहानी असी तुसी बड़ी बार सुनी पर बाणी विच उस साखी दी बाबत उस कहानी दी बाबत गुरु ने की आख्या है कदे समझे ही नहीं, कदे सुनिया ही नहीं। असी सुनते हैं ना कि अचानक गुरु के सामने एक द्यो कद मनु खड़ा हो गया, उनके पैर धरती से ने ते उनका सिर आसमान दी ऊंचाइयों छू गए, वड्डे वड्डे उनके दंद ने मूंह दे विचों अग पई निकलदी। ऐसे खौफ नाल चेहरे वाले मनुख नूं तक के भाई मरदाना जी डर जांदे ने ते गुरु नानक दे पिछे छुप जांदे। एक कहानी तुसी कई बार सुनी होनी पर जरा समझियो कि वाकया एक कहानी एवें ही होई श्री गुरु साहब की बाणी विच। इस कहानी का जिक्र करदे होया गुरु नानक साहब ने अपनी रचना तो कलयुग संबंधी गल की है। जदों गुरु नानक साहब उदासियां ते गए ना कि जदों मथुरा ते वृंदावन दे विचों निकल रहे सन उत्थे होलियां दा दिन सी, नौजवान मुंडे नौजवान बच्चे होली खेल रहे सन। आप सब जानते हो यूपी की होली किहो जी होंदी है, बड़ी मशहूर है, बड़ी बदनाम है। गुरु नानक ने की देखिए कि नशे विच धुत मुंडे बड़िया अजीबो गरीब गल्लां करदे जा रहे ने, बड़े नीवे पत्थर दियां गल्लां कर रहे हैं। असी तुसी भी वेखिए अज उस होली का रंग साडे नौजवान बच्चों उपर भी चढ़ गए। कदे देखो होली के दिन विच दिनां विच नौजवान बच्चे मोटरसाइकलों के स्कूटरों के सलंसर उतार लेंदे ने, नशे करते ने ते हर गली मोहल्ले के विचों बड़ी उची उची आवाजा करते निकलते। बिल्कुल इहो जिहा नजारा मथुरा ते वृंदावन दे विच जदों गुरु नानक उत्थों निकल रहे ते नौजवान बच्चियां दियां इहो जिहियां हरकतां देख के मरदाने नूं शर्म आ गई। सच जाने हो असीं अपने बच्चियां नूं गुरसिखी दी गुड़ती गुरमत दी गुड़ती विरासत विच नहीं दे पाए। जे असीं दे सकदे ते साडे नौजवान बच्चे अज ओहो जी होली खेडण दी जरूरत ना करदे। काश असीं नौजवान बच्चियां नूं गुरमत दी गल समझा सकदे ते जदों उन्हां नौजवानां नूं वेखिया ना
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੇਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾ ਵਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਲਯੁਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

दर्शन हर्षन सरसन हर्षन रंग रती ही करता रे हमें अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड़ बिख बिखाही माया मोह परम पैपुरे सुतदा रास्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई

दर्शन परसुएं गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, हो वै सब तक संबंधी, मूल अरसों कुरसों झटी है। तुद जिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सचा

किन बद ही अरो तीरा न मानो मिल साजन हों तुझ कुरबानो रहाओ एका सेज बिशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता

देश दशांतर में सगले जागे खिन रहन न पावो बिन पग पागे होई कृपाल प्रभु मिला सुपागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तपत करे पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुर भरम चुकाया

जहां देखा तह फिर है पाई, खोल्यो कपाट ता मन ठहराई रहाउ दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, जाप जी साहिब, एक ओंकार। सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है पी सच, नानक हो सी पी सच। सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार, चुपै चुप न हो वई जे लाए रहां ले उतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सहस सियाण पलख हो है ता इक न चलै नाल। किव सुजियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी हुवन आकार हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझाए ता हुक्म हुम कह न कोई। गावै को दान होवै किसै दान, गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण बढ़ियाइया चार, गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करी तनखे, गावै को जी लै फिर दे। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हाजर हदूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाहि खाहि। हुक्मी हुक्म चलाई रा, नानक विगसै वे परवा। साचा साहेब साच नाहि पाख्या पाउ अपार, आख है मंगै दे दे दात करे दातार। फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाऊ बढ़ियाई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार। नानक ए वै जानिए सब आपे सुजियार।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਭਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਪੈ ਜਾਈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਕੋ ਕਰਮ ਖੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਖੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਖੇਤੇ ਵਰਮੈ ਕਾੜ ਘੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ਼ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਖੇਤੇ ਖੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਖੇਤੇ ਅੰਧ ਚੰਦ ਸੂਰ ਖੇਤੇ ਖੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਖੇਤੇ ਖੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼ ਖੇਤੇ ਦੇਵਦਾਨ ਮਨ ਖੇਤੇ ਖੇਤੇ ਰਤਨ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਖੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਖੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਖੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਖੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਏ ਸੁਰਸਦਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰਹੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਦਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਧੀਰ ਜਸਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤਭੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਖਲਾ ਗੰਧਵ ਦਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਟਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਚਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹੇ ਨਰ ਬਰੰਜਾ ਤਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੁਜ ਕਹਿ ਜਾਏ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਸ਼ਾਣ ਗਣੇ ਜਾਏ ਤਿਰ ਪਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਵਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰਗਾ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਕਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗਾ ਜਾਈ ਨਮਸਤੰਗਾ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗਾ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗਾ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗਾ ਧਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗਾ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਸ਼ਿਰਦੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰਗਾ ਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰਗਾ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਤਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਕਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਤੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰ ਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਦਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਰ ਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਮੇ ਨਮਸਤਸ ਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸ ਅਜਬੇ ਆਦੇਸੰਗ ਆਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ
नमास्तंग नरतामे नमास्तंग नरभामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वकाले नमास्तास्तु देवाय नमास्तंग अपेवाय नमास्तंग जनमे नमास्तंग सुभानमे नमो सर्व गौने नमो सर्वभावने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमास्तास्तु दयाले नमास्तंग वरणे नमास्तंग मरणे नमास्तंग जरारंग नमास्तंग कर्तारंग नमो सर्वतंदे नमो वस्तभंदे नमास्तंग नरसाके नमास्तंग नरवाके नमास्तंग रहीमे नमास्तंग करीमे नमास्तंग अनंते नमास्तंग महांते नमास्तासरागे नमास्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वभोगं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वार्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वबाले चाचरी शंभ तव प्रसाद अरूप है अनूप है अजूह पूह लेख पेख नाम है काम है अधेह पे अजीत पीत है त्रमानन दान त्रिवर्ग सर्ग है अनिल है अनाध है जय अजाध है अजन्म वर्ण पूत वर्ण है अगंज है पंज चूज है चांद है अमीघर भी गंध है बंध है निर्भूज है सूज है अकाल है जाल है अल्लाह है जह है अनंत है महंत है अलीक है नरसरीक है निर्लंब है संभ है अगम है जम है पूत है सूत है अलोक है सुख है कर्म है परम है अजीत है पीत है गाय अमान दान अनेक है पर एक है भुजंग प्रयात शंभ नमो सर्वमान्य समाप्ति न जाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो भद भादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परपंगी परमाथे समाधि भूपे कलंक बिना अने कलंकी स्वरूपे नमो राजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राजेश्वरंग परम हृदय नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जोगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देव सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशांग नमो भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमास्तंग शनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समतुल्यवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृध करता अद उर्दर्दंग गंगो करता पारंग परम परमेश्वरंग प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदा तदयालंग अशेदीय भेदीय नामंग कामंग समास्तु ब्राजी समास्तासतामंग हेरा जोर चाजरी शंभ जले हैं थले हैं पीता वे हैं प्रभु आजुआ दे सपे सै भुजंग प्रयात शंभ अगाध्य अबाध्य नंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समाधि न दाने नमास्तु नरनाथे नमास्तु परमाथे नमास्तु गंजे नमास्तु पंजे नमास्तंग अकाल नमास्तवंग अकाले नमास्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वकेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाशाय नमो महामाय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमदानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी नंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातंग बरसजे कृपालंग स्वरूपे गुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदार दिशदंग निवासी चरपट छंद तव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अजल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग ला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शंभ दव प्रसाद आद रूप नाद मूर्ति मृगपार सर्व मंत्र मान देव पेवाद उदार सर्व कालक सर्व सर्व कालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजी अवतू दुरु प्रसाद नाम ठावना जात जा करु ब्रंगना देख आद पुरख उदार मूर्त जो नाद से
देश और न देश जाकर रूप रखना राग जतर ततर दिशा विशा हुई फैले न राग नाम काम भीन पेख कामू न जाहि सर्वमान सर्वतर मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखिल खेल अनंत को फरेक देव बेब न जानी जे बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर विरज जाक मान ही पर दीन लोक चौदह के विखय जग जाप जय जाप आद देवनाथ मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचे सुयम अवकर्ण भंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुबर्म रहूत लख पेश अंग राग न रंग जा कह जात बात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कान सद एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अभंग नात्मेक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को व्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग अर्देख परम वेद प्राण जा कहे नेद भागत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद तव प्रसाद गुणगान उधार महिमा पार आसन अभंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्दनाश आजन बाह शान शाह राजान राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्राण इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनभूत अंग पापांग गतमित अपार गुणगान उधार मुनगन प्रणाम निर्पैने काम आत्मदत प्रचंड मित गत अखंड अलिष्ट कर्म अदृष्ट धर्म सर्वा प्रणाड्या अण दंड बाढ़ चाचरी छंद दव प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारे पारे हरियंकर नामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर भरती चतर चकर भरती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर दाने आए चाचरी छंद न सत्र न मित्र न ब्रह्म न पितरय न कर्म न काय जन्म अजाय न चित्र न मित्र न पर पवित्र न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा कृषाय भगवती शांत तव प्रसाद कथते क्या सिज देशा क्या बिज बेसाय क्या गंज कर्म क्या पंज भरमय क्या पिज लोक है क्या दत्त सुख है क्या अवधूत वर्ण है क्या विभूत करण है के राजंग प्रभाय के धर्मंग तुझाए के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण है के जगतंग कृति है के शतंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव उपाय के आद देव है के आप अपेव है के चतरंग वहीन है के एक अधीन है के रोजी रिजा कर ही मैं रहा कहे के बाक बेअब है के गैबुल गैब है के आप बोल गुनाह है के शान शाह है के कारण कुनंद है के रोजी दहन है के राज करहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने है के सर्वत्र धाने है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने सदैव प्रधान आए के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमा है के परमंग भीमा है के अगलो लाम है के साहब कलाम है के हुसनो वजू है तमाम रजू है मेसर सलाम है सजी के तमदाम है गनी वल सकसता गरी वल परास्ता है बलंदर मकाना है जमीन वल जमाना है तमीज अल तमाम है रुज वल निधान है हरी फल जी मर जाए के यकीन है अनेक अल तरंग है भेद है भंग है अजीज नवाज है गनी बखराज है
नरोग तो स्वरूप द्रमोक्त प्रभूत है प्रभुक्त प्रवाह सुजो सुदाय सदैव स्वरूप सदैव स्वरूप प्रीति अनूप है समाज तो ब्राज सदा सर्वसाज है समाज तुल सलाम है सदैव काम है निर्वास रूप गाद अनूप है ओअंगाद रूपे नाद रूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्ग त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभम सर्वभाग्य सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप सजय सूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रवाह सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप प्रज्योत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह अनुक्त स्वरूप प्रज्योत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है पेखा लेखा है अपर्म है कर्म है अनाद जुगाद है अजय अभय भूत दूत है अनास उदास दंध बंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है नचिंत है सुनिंत है लिख दिख है अलेख पेख टाय गाय असंभ गम है नीलानाद है अनित स्नित है जात है जाद है चरपट छंद दव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं क्षता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद दव प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं भूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाण भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाग श्रीगामी तौमी गाय सदैव प्रवाहे अजय अजाय भगवती शांत प्रसाद के जार जूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समाज कलाम है के साहिब दिमाग है के उस नाल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी रहंद है के राज करहंद है गरीमल कमाल है के उस नाल जमाल है गरीमल खराज है गरीमल नवाज है हरीफल सिकन है रास लपकन है कलंक प्रणास है समाज तुल निवास है गंजलुक नीम है रजाय करहीम है समाज तुल जवाह है के साहिब कराए के नरकंग प्रणास है बैस तुल निवास है के सर्वलुकवान है मीसुल रवान है तमामुल तमीज है समाज तुल अजीज है पारंग परमेश है समाज तुल अधीश है आदेशल अलेख है मेसल बेख है जमीनुल जमा है मी कुल माह है क्रीमुल कुमार है गजरुत जमाल है गजलंग प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है कि आज विश्रूप है कि मैं तो बभूत है कि मैं तो बसा है कि आतम प्रवाह है कि अजलंग नांग है कि मैं तो पांग है मद पार शांत तव प्रसाद मुनमन प्रणाम गुण गण मधाम हर भर गंज हर न प्रपंज गण गण प्रणाम मुनमन सलाम हर नर खांडू भर नर मांडू गण पवनाश मुनमन प्रकाश

ఫలమహంత దిస్మయంత అనుభవనాశ్రద్ధార్థరాస్ ఆజన్బాహిక సదా అహంకార్యాలు గహనీనాద కల్ఖండఖ్యాలు గురుపరకాల కారు కర్పణాము చిత్చరణనామే అంచజిగాద జజనబాత్ అంచజిగాద నిరంజబాత్ ఆని తోట పండారి అంఠట పారు అడీడు ధర్మణ అతడీడు కర్మ అనుభరణనంత దాదావాంత హరపూర్వనాశాంత ప్రసాద్ కరుణాలయా హై అరకాలయా హై కల ఖండన హై మహ మండన హై జగతేశ్వర హై పరమేశ్వర హై కల కారణ హై సర్వభారణ హై త్రత కే తరణ హై జగ కే కరణ హై మన మాన్యా హై జగ జాన్యా హై సర్వం పర హై సర్వం కర హై సర్వ పాశ హై సర్వ నాశ హై కరుణా కర హై విశ్వం పర హై సర్వేశ్వర హై జగతేశ్వర హై ब्रह्मांड सह खलखंड सह परते पर है करुणा कर है जप जप है तप थप है कृत कृत मृत मृत है मृत मृत करुणा कृत है कृत कृत तरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृत कृत मृत मृत है अजप कृत मृत मृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणा लिया है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अर्गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्मवास है जस के जास है पुजंग प्रजा दिशांद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संघ दाम संघ शांत रूपे नमो ब्रह्म दत्तंग दत्तंग स्वरूपे नमो जो योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्ध नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूज नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादंग भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो भंग भंगे भंगी स्वरूपे अनंगीय नामे इंद्र भंगी त्र काले अनंगीय कामे एक श्री शंब अजय लय भय भय पुअ जूनाश काश गंज बंज लख पख अकाल दयाल लेख भेख नाम काम घाट नाथे परमाते जो नियमोनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंज लेखे भुजंग प्रयाद छंद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणाशे गंजल नामे समास्तल निवासे नृकामंग विभूते समास्तल स्वरूपे कर्म प्रणाशी सधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सदरंग प्रणासी ग्रीमल गुनिंदा समाज तल निवासी अजय भूते जय गुनिम हरियं करियं ग्रीम रिम चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते सुजम पव सुभंग सर्वदा सर्व जगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतर चक्र भरती चतर चक्र भुगते सुजम पव सुभंग सर्वदा सर्व जगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्र भुगते सुयम पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ तव प्रसाद सुइये को ओंकार सतगुरु प्रसाद तव प्रसाद सुइये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुर सुर सुरावधन शुद्ध सुधारिक संत समूह अनेक मज के सारे ही देश को देख रहे हो मात कौ न देखे प्राणपति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते करती बने करती के मातिम दंग जरियर संग अनूप दंग सुरंग सवारी कोट दरंग गुरंग से गुद पौन के गौन को जात निवारी पारी पजान के भूपली बद न्याव शीस न जात विचारी ते पाए तो काम पाए भूपत अंत को नह गई पाए पधारे जीत फिर सब दे सुदसान को बाजत तो मृदंग नगारे गुंजत गुड़ ज्ञान के सुंदर हंसत है हज राज हजारे भूत भवैख भगवान के भूपत है कौन करे नहीं जात विचारे सही पास सही भगवान कृपा बिन सरी पास सरी भगवान बजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दमदान सुसंजम नियम अनेक वसेख वेद पुराण कदेव कुरान जमीन जमा सुहान कदेख पौन हार जतियार सब सब चार हजार कदेख
ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਵਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਥੀ ਬਿਨੇ ਕਨਾਲ ਲੇਖਾਏ ਸੁਧ ਸੁਭਾ ਦੁਰੰਤ ਦਵਾ ਸੁਸਾਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਪਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਪਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖਲ ਨਹਾ ਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਹਰੀਨ ਮਰੋਰਮ ਵਾਸਨ ਮਾਤਿਮ ਦੰਗਰ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਧਾਰ ਬਛਈਆ ਤੋਰ ਤਦੇਸ ਮਲੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗਡਾਨ ਕੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੁਭਾਤ ਨਹੀਂ ਜਗ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ ਜਾ ਜਗ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ ਦਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਗਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਸਲ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਬਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਦੋਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਦਰ ਸਵੈਬ ਲੋਕ ਜਪੈਂਗੇ ਮਾਨ ਵੇਂਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾ ਤਪਜੋਂਦਰ ਲੋਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਤਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰ ਬਰਸਾਜ ਭਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸੰਸਤੀ ਬਦ ਅੰਧ ਵਦੇ ਜਮ ਬਾਦ ਭਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾਰ ਸਰੀ ਪਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸੈ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਧਰਾਂਗੇ ਕਹਾਂ ਪਹੁ ਜਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਨੀ ਸਾ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਉਬਰ ਲੋਕ ਆਇਓ ਬਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆਨ ਸੁ ਬੈਠ ਗਏ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁਭੈ ਸੁਧਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਬਾਹਨ ਪੂਜ ਰਹੇ ਸਰ ਕਾਹੂ ਲਿੰਗਰ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖ ਹਰ ਵਚ ਦਿਸਾ ਵਹੇ ਕਾਹੂ ਬਸ਼ਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ ਕਹੁ ਬਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਬਾਸ ਕਹੁ ਮਰਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ ਪੂਰ ਕਰਿਆ ਉਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਾਗੋ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ ਕਹੁ

तबे बाज बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काबो आप हाथ दे मोहि बचाव सुखी वसै मुरु परिवार सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे सब बैरन कवास करे पूर्ण हो हमारी आशा दूर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं जो बर जाहो सदम दे बाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चौन चौन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे बरे है मरण काल का त्रास निवरे है पूजो सदा हमारे बचा श्री अस्तो जो करे और अच्छा राख ले मुझे रखना है।

संसार केवल सजा प्रथम संसार एका रूप अनुस रूप रंग भयो राव कई भूपा अंडज जेरज सिने उत्पुज खान बहोर रच दिने कहूं फूल राजा बैठा कहूं सिमट भयो शंकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम

सर्वठार महो सहाय दोष्ट दोख ते ने बचाई। सतनाम श्री वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माई सतगुरु में पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइया, शब्द तां गाव हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरा सब किस है।

करते रहे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब बजाइया सदा।

तन जागे जे पिर बोलंता भई नरासी बहुत सगल बैसद भई नरासी बहुत दिन लागे देश दसांतर में सगले जागे खिन रहन न पावो बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलन सभागे भयो कृपाल

खोल्यो कपाट ता मन ठहराई। जह जह पिख जह देख तै बिरह पाई। खोल्यो कपाट ता मन ठहराई। रहाओ दूजा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

0: तेर तोती कखाई, हथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होए परवान, मले शैतान ले पूजे प्राण।
1: कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसेना जाना, देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे ए अन असाडा फिटे।

पास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी हो वे पास साहिब के ती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विकास महला दूजा नाल ए आने दोस्ती वडारू सो नहीं हो।

ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जन्म है कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का इह गुनाऊ नानक ज्यो पावक का सहज सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन कहे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल ईरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी से काश बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पहला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदहार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रवसांग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अंबुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मान परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कार सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रयाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सार जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का दास ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बानी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। सलोक पुर तार जो अंतर नाम सर्वमय पीख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपारस सगल निस्तार। अष्टपद मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्शन। परत्र रूप ना पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत। कारण ना सुन काहू की निंदा सब ते जान आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हर मन की वासना मन ते टर। इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होए पिहन। कर्म कर्त होवै नि कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बांछै केवल भक्त कीर्तन संगराचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत किरपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै। भगौती भगवंत भगत का रंग सगल ते आगै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खूवै तिस भगौती की माता उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अर्पै विष्ण परीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगौती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म मह सोधै।
राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूक्ष्म मह जानै असतूल। चौ वरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना मह जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गद होय, साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उर तारै, पस पेत मुग्ध पाथर कौ तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। ताहू जुगत कितै ना पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मान पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पहाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास कौ आप कृपा करै, तिस दास कौ सब सोझी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सौ कहावै। तैसा हर्क तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले छाओ, जित जित कर राख तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक औसत कर है अनेक जान, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहु भेद अनक प्रकार। अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्योहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट मान प्रमह उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कव काव विचार है। कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत ना पावह। कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब कौ हिर है, कई कोट पर दुख ना कर है। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे। जित जित लावहो तित तित लगना, नानक करते की जान करता रचना। कई कोट सिद जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाय। कई कोट पवन पानी वह संतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तहार, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास्त। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चेर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जाच किन्नर पेसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। सब ते नेरै सब ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहुजोनी फिर है। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कल है थक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। जह जह पहना तह तह राखे, नानक सब केश प्रभ कै हाथे। कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कौ मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मंग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिन कौ होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट होए अवतार, कई जुगत तीनों विस्तार। कई बार पसर्यो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट इन्ने बहु पहात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात। ताका अंत ना जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए।
कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तात के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पहे साध सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रास सुख सहज सुमाव है अपने जन कौ सास सास सुमारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करन करावन करने जोग जो तिस पावै सोई होग खिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तहार अतहर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई प्रभ पावै मानुख गत पावै प्रभ पावै ता पाथर तरावै प्रभ पावै बिन सास्ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण भाखै प्रभ पावै ता पत उदहारै आप करै आपन विचारै दोहां सिरियां का आप सोआमी खेलै दिखसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिखिया मह रचै जे जानत आपन आप बचै परमे भूला दहरस तहावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मह नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु ना आवै किस तत्काल दहरस प्रगटावै जा कौ अपनी करै बखसीस ताका लेखा न गणै जगदीश जियो पिंड सब तेती रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बाल नाही के सहास करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जोत पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहु निंद चिंद व्यवहार कबहु ऊब आकाश पायार कबहु बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहु नित करै बहु पहांत कबहु सोए रह दिन रात कबहु महाक्रोध विकराल कबहु सर्व की हो तरवाल कबहु होए बह बड राजा कबहु पेखारी नीच का साजा कबहु अप कीर्त मह आवै कबहु भला भला कहावै ज्यो प्रभ राखै तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहु होए पंडित करै बखियान कबहु मोन तहारी लावै ध्यान कबहु तट तीर्थ इसनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ पहावै तिवै नचावै ज्यो तिस पहावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहु साध संगत इहो पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जलम है जल आए खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसकै अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जानै मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आप सिकौ कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन प्रमावै तान भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै चरण समान कछ संग न जावै बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जानै बलवंत खिन मह होए जाए पसमंत किसै न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जान नानक दरगह परवान कोट कर्म करै होत हरे संपावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै
आप सकाओ जो भला कहावै सह भलाई निकट न आवै सर्व की रेन क्या का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझ ते कछु होए तब इस कहो सुख नाही कोय जब यह जानै मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब तहारै को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खट्टे लक उठतावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनक भोग विखिया के करै नह तृप्तावै खप खप मारै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार किसकै हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हो कै संग बूझै देखै करै विवेक आप है एक आप है अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्थार सब कछ उसका ओह करनै हार उस ते भिन्न कहो किछ होय थान सनंतर एक सोय अपने चलत आप करनै हार कौतक करै रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन ना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किनै वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किनै बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सवन बखयाने पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुरे अवतार अष्ट परे संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा देहीन संत के हते कौ रखै न कोय संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीच आए संत दोखी का थाओ को नाहे नानक संत भावै ता कोय भी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक कौ सर्व रोग संत के निंदक कौ सदा बिजोग संत की निंदा दोख मह दोख नानक संत पहावै तां उसका पी होए मोख संत का दोखी सदा अपवित संत का दोखी किसै का नहीं मित संत के दोखी कौ दान लागै संत के दोखी कौ सब त्यागै संत का दोखी महा अहंकारी संत का दोखी सदा बिकारी संत का दोखी जन्मै मरै संत की दुखना सुख दे डरै संत के दोखी कौ नाही ठाओ नानक संत पहावै तां लय मिलाए संत का दोखी अध बीच दे टूटै संत का दोखी कितै काज ना पहुँचै संत के दोखी कौ उद्यान प्रमाहियै संत का दोखी उजड़ पाइयै संत का दोखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दोखी की जड़ किश नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दोखी कौ अवर न राखन हार नानक संत भावै तां लय उबार संत का दोखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दोखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै संत का दोखी छुटै अकेला ज्यों बुआड़ तेल खेत माहे दुहेला
संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सत मिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सो इथे आन। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दोखी की पुज्जे ना आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया किरत ना मीटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्यावहो सास गिरास। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जान से सलोक। सजहो सियानप सुर जनहो, सिमरहो हर हर राय। एक आस हर मन रखहो, नानक दुख भरम पहो जाए। अष्टपद मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन कौ एक भगवान। जिसकै दिए रहे आगहाय, बहु न तृष्णा लागे आए। मारे राख एको आप, मानुख कै केश नाही हाथ। इसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न न लागे कोए। उस्त मर्म है कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मत्था। बट भागी तेजान जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करह विचार, से धनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोल है हर मुखी, सदा सदा जान होते सुखी। एको एक एक पछान, इत उत की ओह सोजी जान। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया। गुर प्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जान तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओह हर जन रहत। अन दिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ है सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह ना लाग है दूख। जिसको हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किसते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में है आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूझिया। जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किस जन्म नह किस मर, आपन चलत आप ही कर। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तहारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मह आप, अंत जुगत राज थाप ओथाप। अविनाशी नाही किच खंड, तारण तार रहो ब्रह्मांड। अलाखा भेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उतरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय किरपाल, गुर का शब्द जप पहे निहार। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनो कृपा करहै बड़ भागै। नाम जपत पावह विश्राम, नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान। जो किसी करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाए होवै सो होए, करणै हार पछाणै सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निदान उनहु बन आए। आप सकाओ आप दीनो मान, नानक प्रभ जान एको जान। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जान नहार। जाकै सिमरन उदरिय नानक।

और जिसनों प्रीत हो गई है उसकी अवस्था की बन गई है कि मैं हूं उसके बिना रह ही नहीं सकती। मेरे तो हृदय च चाओ खुशियां ही खुशियां हो जाएं बिना खाधे बिना नींदर दे बिना पदार्थ के गुरसिख समाधि च रहा सहज अवस्था च रहा समाधि का अर्थ होंगे समाधि जिसकी बुद्धि सम अवस्था च आ गई है। गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है

सतगुरु सच्चे पातशाह अपने जन को दे वडियाई। ये मैनू आनर दे, ये मैनू मान दे कि गुरमत राम नाम प्रगासो, कि गुरु की मत लैके। गुरमत का अर्थ हुंदा थ्रू गुरुज अडवाइस। मैं गुरु की अडवाइस लैके, गुरु की मत लैके, गुरु की सिक्ख्या लैके अपने जीवन के अंदर रोशनी पैदा कर सकता। और तुसी देख लो सारी हिस्ट्री, सारा इतिहास गुरु नानक साहब का पढ़ लो, की वंडन गए, की देन गए थे लोगों ने, केड़ी चीज की घाट, वट वॉज लैकिंग इन दैट सिस्टम इन सोसायटी एट दैट टाइम विच गुरु नानक देव जी फेल्ट। एंड हाथ के कुछ भी नहीं है तो लैके की गए ने। भाई गुरदास जी ने बड़ा खूबसूरत किया कि बाबा देखा ध्यान धर जलदी सब पृथ्वी दस्या। बाबे ने ध्यान ला के देखा ना तो एक इंसान को रोंदया कुरलोंदया देखा। और गुरु नवाजी गुरु संगत जी ये जो रोंदया देखा ना गुरु नानक साहब ने, उन्होंने सिर्फ गरीबा रोंदया नहीं देखा, जिन्हां नाल बेइंसाफी हो रही थी उन्हां नूं रोंदिया नहीं देखिया, सिर्फ उन्होंने एक एक व्यक्ति नूं राजा नूं रोंदिया देखिया, अहलकारां नूं रोंदिया देखिया, विद्वानां नूं रोंदिया देखिया, सोसाइटी के हर वर्ग नूं, हर इंसान नूं रोंदिया देखिया। किस चीज का रोना सी, क्यों क्यों रोंदिया देखिया? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का जो डायग्नोज सी उस सोसाइटी का, वो अज भी उही है कि बाबा देखा ध्यान धर जलदी सब पृथ्वी दस्याई। तो गुरु ने देखा कि बाजों गुरु गुबार है। इंसान के जीवन चो गुरु निकल चुके हैं, जिन्हें जीवन में अगवाई देनी है, जिन्हें गुरमत देनी है, जिन्हें सिक्ख्या देनी है, जिन्हें सिखाना है। जो गुरु के गुरु जीवन चो निकल जाए तो फिर सिर्फ रोना रह जाता है। बाजों गुरु गुबार है, तो फिर की है कि है कर दी, हाय हाय कर दी सुनी लुकाई। लोगों रोंदया देखिया, कुरलोंदया देखिया, क्योंकि जो जीवन चो जिस शक्ति ने जीवन नू लाइट देनी है, जिस शक्ति ने जीवन नू चानन देना है, जिस शक्ति ने जीवन नू जीवन का मकसद देना है, जो वो निकल जाए तो फिर जीवन च रोना रह जाए। तो दोस्त पीपल who live their life with a purpose. Purpose की है कि पई प्राप्त मानक दे हुड़िया, गोविंद मिलन की तेरी। दूजा पर्पज यही है किब सचियारा हुई है, किब कूड़ा तुटा। आ पर्पज है कि मैं अपने जीवन च जोत पैदा किमें करा, अपने जीवन च चानण पैदा किमें कर सकता, ताकि चानण दे विच मैं देख सकता कि जीवन दे लई महत्वपूर्ण की है। सतगुरु सच्चे पातशाह दे वचन साडे सारयां दे हिरदे च वसन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी के असं अपने आप को कहाने हैं, तो फिर उन्होंने नज़र वाल मार के देखिए उन्होंने जीवन वाल के की देन गए से, की लोगों उन्होंने को मिले। जो समझ आती है तो उ जीवन से जो छुपया होया सच्चे पातशाह जी ने वह प्रकाश किया, उन्होंने प्रगट किया, वो मत दिते जिदे नाल जो साड़ी संभावना है। अमृत वेले भी जो सवेरे भी सुखमनी साहब की विचार के भी जो साडे अंदर छुपया होया बीज है उन्हों प्रगट किमें कर सकीए, उस मत सतगुरु ने सानू दिती, बख्शिश की। सो यही साडे जीवन का मकसद बने। जीवन च जो तक गुरबाणी गुरु सिमरन नहीं आता उदों तक यह गल बनती नहीं। साडे जीवन च गुरमत आवे, गुरु का सिमरन आवे, बंदगी आवे, कमां ते जाण तों पहलां साढ़े जीवन की प्रियोरिटी बने कि असी अंदरों देख लीए कि साढ़े असी करना की चाहते, बनना की चाहते। पाठ करके टका देना, नितनेम करके जदों असी जावांगे तो साढ़े काम के विच भी जिहड़ी है वह गुरमत नजर आए, साढ़े वर्क के विचों भी गुरु दिखना शुरू हो, साढ़े वर्क के विचों भी वैदर वी आर साइंटिस्ट और यू नो इन एनी फील्ड इन एनी प्रोफेशन वी आर इन द गुरमत शुड रिफ्लैक्ट इन आर प्रोफेशन। गुरु की जी मकसद मत है तो जो सा जिंदगी का मकसद है वह रिफ्लैक्ट करे, ना कि सिर्फ गलों के सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर। आओ प्यार गा के फिर अरदास करिए, मेरे गोविंद अपने जन को दे।

0: जो वसदी
1: वो तू पवन विच वगदे ताइयो कुदरत खेड़ खेड़ हसदी कुदरत खेड़ खेड़ हसदी
0: आ हुक्म तेरे विच जानते है सूरज बारे बारे जान मैं तेरा

0: हे कर्म मेरे दे दे दे बाणी बाणा दे दे बाणी बाणा
1: वो तेरे घर विच मर के जीवे जो तेरा मर जाना जो तेरा मर जाना
0: ओ बदल सितारे कर्म मेरे दे दे दे बाणी बाणा दे दे बाणी बाणा
1: वो तेरे घर विच मर के जीवे जो तेरा मर जाना जो तेरा मर जाना
0: ओ बिधिपुरिया तेरे लेखे लग जाने मेरे सा प्राण मैं तेरा फूक

कर्म असीम करते हैं। पिछले दिहाड़िया की लड़ी नाल जो है जीवन कर्म खेत्र है। लफत आए सन कर्म धरती शरीर उस कर्म नहीं बने, इसके लिए जीवन कर्म से निर्भर कर दे। मनुख कुछ करे तो नाल सोचे की कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं, दो चीजों का ही कर कर्म खेत है। कर्म धरती शरीर कालयुग विच जेहा को बीजे जेहा को खाए, कर्म से निर्भर है। असी भी करना पर एक ख्याल करियो, रब भी करता है। अज सवेरे भी एक लफज आए सन रब कर्म रहत नहीं, उनका कर्म खेत्र साडे नालों बहुत वड्डा है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी वड्डी है। सवेरे दे लफज उनका परिवार वड्डा है, उनका कारोबार वड्डा है, उनका घरबार वड्डा है। जिन्नी वड्डी जिम्मेवारी होगी उन्ना ही कर्म खेत्र वड्डा होगा। इसलिए रब भी कुछ करता है, वो भी कर्म खेत्र नाल विचरता है। पर एक ख्याल करो साडे कर्म विच ते उनके कर्म विच एक सूक्ष्म भेद है। साडा कर्म रिटर्न पालता है, असि जो कुछ करने हैं पहला सोचने सानू इन प्राप्ति की है, सानू मिलेगा की। मैं एक गलती की, जे मनुख नू पता लग जाए ना गुरुद्वारे गया कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल ना आवे। जे नू पता लग जाए दान का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल ना करे। जिन्नी देर उन्हू यह विश्वास नहीं आ जाता कि उसके चौगुण करे निहारे अद तो प्रॉफिट ले। इसलिए इनका कर्म किसके रिटर्न से, किसके प्रॉफिट से, किसके प्राप्ति से निर्भर है, किसके किसके शर्त से निर्भर है। तो जड़ी चीज शर्त से होवे होंगी बिजनेस से, बिजनेस कभी भी सफल नहीं होंगी जो उनका लेखा ना हो। जिस व्यापारी जिस बिजनेसमैन नु लेखा करना ही नहीं आता, हिसाब किताब भी नहीं रखता, वो बिजनेसमैन कभी सफल नहीं। वो तो शर्मा नु अपनी रोकड़ जोड़ता है कि एक दिन भी फर्क पै गया पता नहीं की यार नुकसान हो जाएगा। हर व्यापारी शर्मा नु डेली अकाउंट रखा रखता है, शर्मा नु रोकड़ जोड़ता है की गवाया की पाया, क्योंकि उन्हें पाने की आदत है हर चीज। इसलिए उनका कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिंदा लेखा ना हो, भावें मुलाजम ही हो ना, फिर भी वो अपने घंटिया तक की गिनती करता है कि मैं किन्ने घंटे फलाने लिए काम किया, क्योंकि कल तनखा लेनी। मेरा वो हिसाब नहीं करता जिन्हें उन्होंने रखिया, वह भी रोज का हिसाब जोड़ता है इन्हें किन्नी प्रोडक्शन की है, किन्ने घंटे काम किया है, किन्नी किनिया छुट्टियां कीतियां, सारा हिसाब किताब उन्होंने रखना पैंदा है, क्योंकि मनुख ने उनके बदले में कुछ लेना है। जिथे भी रिटर्न का मसला होएगा ना उत्थे लेखा होएगा ही होएगा। इसलिए मनुख का जिन्ना कर्म है वह लेखे में है, उनका हिसाब किताब गिनती रखना ही पैदा। पर एक ख्याल करियो, रब जो कुछ करता है ना, जो कुछ दिता है, जो काम किसे भी करता है उनके बदले में रिटर्न नहीं पाता। सारे संसार लिए कुछ करी जाता, बिल्कुल नहीं कहता तुसी बदले च मैनू की देंगे, बदला चाहते ही नहीं। किसी भी उनका कर्म केवल कर्म नहीं रहा, कर्म बन गया। दूजा कर्म का अर्थ है रहमत। लो प्रभु जी, उनका कर्म केवल कर्म ही नहीं,
ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਰਹਿਮਤ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ

हमने लेखा भी रखी लोड़ी एक ओंदियां जितियां हुई अखां निगाह जिहड़ी है नेत्र जिहड़े ने उहनूं तूं 50-60 साल तक वरते है कोई बिल नहीं आया उन्हें कोई पैसा नहीं मंगे ते जे 50 साल बाद तू उहदी वरतों कर करके निगाह घटा बैठा है तूं आखिया ऐनक लवा लव होर वेख लव पर ऐनक लाने वाले ने तेनूं बिल दिता है नाल उन्हें 60 साल की गिनती दी सी उन्हें तीन साल की दी है 3 साल बाद फिर उन्हें नवा नंबर लाने ते नवा बिल लेना पर लिखा तो उन्हें की लिखे की लड़ है उनका कर्म तो कर्म है भाव कर्म रहता है वो दाता है

रात खान पीन का खाना पीना हंसना सोना बिस्तर गया है मरना खत्म विसार खुआरी कीनी तेरे के जीवन नहीं रहना ये जा जीवन गुजारी जाने उन्हें होर कुछ खान पहनन तो बिना सुज नहीं रब दी चेतनता उन्हां दे अंदर जागदी नहीं पर निरंकार केडा विशाल है केडा वड्डा दाता है उन्हें एक तिल भर इन्ना भी तमा नहीं कि कोई मेरी सिफत करे ताई मैं दिया है ये भी तमा है सिफत करवानी भी लालच होंगे गुरु कहते हैं उन्हें इन्ना भी तमा है जिहड़े रब नूं नहीं मन्नदे मुक्कर जांदे ने आखिर ठिकाणे नहीं रब उन्हां नूं भी दे जांदा क्योंकि उन्हें किसी गल का तमा नहीं यह नहीं कि बदले में दौलत नहीं चाहता यह इतों तक कि वो ये नहीं चाहता कि कोई मेरी सिफती करे ताई दे कल सवेरे भी एक तुक आई परसों शाम को एक तुक आई कि हे मेरे रब जे मैं तेरी सिफत करना तेरा नाम जपना तेरे पे एहसान नहीं करता तेनू की लोड़ कोई नहीं भी कोई लोग मेरा नाम जपन मेरी वड्याई कर मेरी सिफता कर तो तू राजी हूं बिल्कुल नहीं तू तो इन्ना बेपरवाह है जे सब मिलके आखन पाए वड्डा ना होवे घाट ना जाए ना तो वड्डा होगा ना तो किसी छोटा की छोटा हो सके ना घाट है नबाड है नबाड घाट हो सके इसलिए तेनू वड्डा करने वाले असली वड्डा वड्डा आख के वड्डा नहीं कर सकते तेन मोताजी नहीं असं तेन वा आखिए तेरी वड्याई हो लफज आए सन कि मैं जरा तेरे दरबार से कूकर बन के पहुंक रहे हैं जे तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं तो अपने बचा ली मैं दोबारा लफज दोहरा देना चाहता साढ़े चेत्र में टिकने चाहिए लफज सन एक कूकर हों बेगाना कूकर की दुनिया की एक उदाहरण कूकरां नूं सुभाव हुंदा है किसे होर महल्ले दा किसे होर देश दा किसे होर इलाके दा कूकर उन्हां दे इलाके विच आ जाए ना सारे कहिंदे ने नूं खा लो इकट्ठे होके पै जांदे ते फिर ओह चौं चौं करदा है आवाज़ां दिंदा है इसलिए दिंदा है कि मेरा भी कोई मालक आके मैनूं बोड़े मैनूं इन्हां कोलों बचा ले मैं इन्हां दे इलाके विच आके फस गया गुरु केंद्र हे मेरे मालिक मेरी भी हालत यह है मैं आया तेरे दरबार में भेजिया इस संसार विच मैं तेरे दरबार विच आया इस संसार विच आ गया बगाने देश विच आ गया इसे कौम कोद लोभ मोह हंकार निरे विकार ही विकार ने कुकरा वांगू जिहड़े मैनू खा जाना चाहते ये कित्थों रब दे देश दा इत्थे आ गया खा जावे सारे विकार कुकरा वन मेरे जन्म के पिछे पाए हुए ने इनका जीवन बर्बाद कर दिया खा जाना चाहते तो जे मैं भौंकना जे मैं आवाज देना ना तेरे सामने अरदास करना वड्याइया कर रहा इसलिए नहीं कि तेनू वड्डा कर दिया मैं तो इसलिए कह रहा भरा तेरा ना सुन के ये भी समझ लें भी इनका भी कोई मालिक है तो मैं छड़ जा मेरा बचाव हो जाए भला तेरे नाम की गल सुन के मैनू छड़ जाण मैं ते अपने बचाओ लई अपने तन नू बचाने लई अपने जीवन नू बचाने लई तेरे दर ते पुकारा करना कहन लगी।

क्योंकि उन्हें कुल राज्य है। अपनी पुस्तक में भी एक लाइन लिखी थी कि भुख दुख है संतोष सुख है। बड़ी संक्षेप जी परिभाषा है, जिन्नी भुख है उन्ना ही बड़ा दुख है, जिन्ना संतोष है उन्ना